जो इंसान हर किसी को इज्जत और प्यार देता है, असल में वो खुद ही बड़ा इज्जतदार होता है, क्योंकि एक इंसान दूसरे इंसान को वही देता है जो उसके पास होता है। और यहाँ से हम सुनेंगे जॉनी वॉकर की आवाज़ में मोहम्मद रफ़ी, जो इसमें प्लेबैक की है, मिस्टर एंड मिसेस 55, एवरग्रीन सॉन्ग, जाने कहाँ मेरा जिगर गया जी, आप ही बता दो।

0: गांव के।
1: हाँ बस बड़े बड़े अखियों से डर गया है जी। सुनने वालों कहते हैं कि चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, कुछ पल सुकून के भी होते हैं। यानी कि अब जब चाय पे बैठे हो तो कुछ पल आपको थोड़ा से रेस्ट मिलता है, तो इसलिए कहते हैं कि चाय के कप में सिर्फ चाय नहीं होती, कुछ पल सुकून के भी होते हैं।

सदा बहार गीत यहाँ से आपके लिए चलाया जाता है। आपका फाहन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से सावन का महीना पवन करे शोर। मुकेश और लता जी की आवाज़ में फिल्म का नाम मिलन।

एक चिड़िया ने मधुमक्खी से पूछा कि तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है। चिड़िया यानी फोखल मधुमक्खी होनिंग बाई। तो ये चिड़िया ने पूछे मधुमक्खी से कि इतनी मेहनत से शहद यानी कि होनिंग बनाती हो और इंसान आकर उसे चुरा ले जाता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता? तो मधुमक्खी ने सुंदर जवाब दिया। मधुमक्खी ने चिड़िया को सुंदर जवाब दिया, इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है कि इंसान मेरा शहद ही चुरा सकता है, मेरी शहद बनाने की कला नहीं। कोई भी आपका क्रिएशन चुरा सकता है पर आपका टैलेंट नहीं चुरा पाते या।

तो जैसे मधुमक्खी के शहद लोग चुरा लेते हैं, ले जाते हैं इस्तेमाल करने के लिए, पर उनकी कला जिस तरह से वो मधु बनाते हैं, शहद बनाते हैं, उसका कला तो आज तक तो कोई नहीं पा पाए हैं। इसलिए कहते हैं कि आप जो करते हैं, शायद आपके जो आप बनाते हो उसका क्रिएशन ऐसे भी कोई चुरा सकते हैं, पर आपका मन का विचार जो है उसका बनाने के लिए वो शायद कोई नहीं चुरा पाएगा।

इस खूबसूरत दिवस में आपको लेकर चलते हैं सुनने के लिए आशा भोसले जी और किशोर कुमार जी की आवाज में कि आंखों आंखों में क्या हुआ।

0: बहुत शुक्र
1: बहुत शुक्रिया, करम मेहरबानी फरमाए आपको। रफ़ी और आशा भोसले जी ने फिल्म का नाम एक मुसाफिर एक हसीना, तो एक मुसाफिर एक हसीना के तर लेकर हम आपको चलते कि हम तुम एक कमरे में बंद हैं।

जी हाँ सुनने वालों, हम तुम एक कमरे बंद हो और चाबी खो जाए तो सोचो क्या होगा। ये सुंदर सा गीत तो जो हम मिलकर और सुने हैं, श्रवण किए हैं आज इस खूबसूरत दिवस में, लता जी की आवाज में साथ दे रहे थे शैलेंद्र जी। फिल्म का नाम ये तो आपको जरूर से पता होगा, अगर पता नहीं तो हम यहाँ से बता देते हैं, फिल्म

खूबसूरत होना सिर्फ अच्छा नहीं, खूबसूरत होना सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि अच्छा होना बहुत ही खूबसूरत है।

माइति मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस और लता जी के साथ ये गीत हम आपको सुनाए हैं फिल्म फर्श में से निकाल कर हमने पेश की लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर। फौन हिंदुस्तानी पर आप चून हैं, जो लोग चून किए हैं आपका स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम एक सुरेश वाडिकर जी के गीत आपको सुनाते हैं। चलो सुरेश वाडिकर की आवाज़ में ये गीत।

सुरेश वाडकर आपको सुनाए ये शानदार गीत निगाह है यार ने कि एक ऐसा जादू भर दिया, और ये गीत हमने पेश की आज के कार्यक्रम में। अगला गीत हम पेश कर रहे हैं, जी हाँ, देखते हैं ये प्यारा गीत भी जहाँ तक मेरा ख्याल है फर्श से निकाल रहे हैं, तो इस तरह से हम इसे चला रहे हैं, सुना रहे हैं।

शिकार करने का आए शिकार होके चले, ये गीत हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। ये अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं, और क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊँ इस तरह से। माइती मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस।

लता जी और माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस दोनों मिलकर आपको सुनाइए ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए एक गीत हमने प्लेयर में रखे हैं और ये भी लता जी के फिल्म है आओ प्यार करें। जी हाँ, तो चलो सुनते हैं आओ प्यार करें में। और तो गाना तो है लेकिन कौन सा गाना मैं चलाने वाला हूँ लता जी की, ये सुनिए।

So, gaan jy sê pata chalta sê stok wat van plan. लता जी की आवाज़ में ये शानदार गीत हम आपको सुनाए। योजना तो बहुत बनाया मौसम के देखकर। बहरहाल फ़ौन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हमने ये गीत पेश की। तो अगर ये गीत पेश की तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत उसके बाद।

लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साज पर ये गीत पेश हुआ, लता जी की आवाज़ में। फिल्म आन मिलो सजना में से हमने निकाले हैं और आपको सुनाए हैं। अगला गीत हमने प्लेयर में एक रखे हैं, इसकी थोड़ी बयाना बता देते हैं। ये गीत गाया गया है सी रामचंद्रा, जो म्यूजिक डायरेक्टर है, उन्हीं के साज पर, लता जी के साथ फिल्म अलबेला में। तो बात ऐसे है कि अब कौन रात्रि के 12 बजे रात्रि को यहाँ स्टूडियो आएगा और बैठकर आपको ये गीत सुनाएगा, मेरे बस की तो बात नहीं है। शायद कभी साल में एक बार हो जाए कि 12 बजे रात्रि को मैं यहाँ आऊँ, स्टूडियो में बैठूँ और आपको पहले बताऊँ कि गंगा ये गीत चलाने वाला है। ये नहीं करेंगे। चलिए ये गीत हम अभी आपको सुना देते हैं, क्योंकि 12 बजे रात्रि का कौन इंतज़ार करेगा। चलो हम आपको सुनाते हैं ये शानदार गीत। इस तरह से आ रहा है, 12 बजे रात्रि को जलाना चलाना था, हम आपको अभी सुना देते हैं इस तरह से।

श्री रामचंद्र के साथ परिचितल का रामचंद्र खुद और लता जी के साथ ये द्वैत हम आपको सुनाए हैं फिल्म अलबेल में से निकाल कर। अब ये तो ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने कहा कि 12 बजे रात्रि को कोई हमार को लिखा या मैं आकर ये गीत आपको सुनाऊं तो लगे हाथ हमने अभी आपको सुना दी। यूँ समझिए कि 12 बजे रात्रि है, आपने आँख मूल ली है, रात हो गया। बहरहाल फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चुने जो चुन किए हैं, इस मीटर पर आपका हृदय से स्वागत है।

में प्रेम प्यार मोहब्बत के जगह मिले हैं, वह क्या बात है। रफ़ी साहब की आवाज़ में और लता जी आपको सुनाएं ये शानदार गीत। चलिए ये गीत हमने प्लेयर में और रखे हैं, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये गीत सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है। नागपंचमी में से नेगेटिव तुम्हें सही फिल्म

वाह क्या बात है, यह शानदार गीत पेश हुआ हमने चलाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं ये गीत। जी हाँ, चलो ये गीत सुनते हैं, इस तरह से आ रहा है।

नजर को संभालो, ये क्या हो रहा है। लता जी की आवाज में माइतू मुकेश आपको सुनाए फिल्म कोबरा ग्यूल में से निकाल कर ये गीत हमने पेश की। आप चून है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चून के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए चलिए हम पेश करते हैं ये प्यारा गीत, इस तरह से आ रहा है। जी हाँ, माइती मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस।

फिल्म मधु में तही मधुमती में से निकाले हैं ये शानदार गीत। मैथि मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं लता जी के साथ ये प्यारा द्वैत और हमने पेश की फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। चलिए आप भी हैं और मैं भी हूँ, जी हाँ आप भी हैं और मैं भी हूँ, तो क्या ख्याल है अगर जब मैं आपको ये सुनाऊँ। जी बस दिल थाम के बैठिए और ये गीत से लुत्फ उठाइए, इस तरह से आ रहा है।

तेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू और तेरे ही नाम से ख़त्म। लता जी और मनमोहन सिंह, लता जी और मनमोहन सिंह मिलके आपको सुनाए उत्तम जगदीश के लिखी, जी नहीं, उत्तम जगदीश का म्यूजिक है और हमने निकाले फिल्म वारिस से। प्रेम प्यार मोहब्बत के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को हम सुनाए ये गीत। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है एवरग्रीन किशोर कुमार जी। हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको क्या रहा है, सुना रहा है आरडी बर्मन के साज पर, सत्ते पे सत्ता में से निकाल कर।

एवरग्रीन किशोर कुमार सत्ते पे सत्ता में से निकाले हैं और हमने पेश की हो फुरफाउन हिंदुस्तानी रेडियो आरदीन बर्मन के साज पर, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। तो कार्यक्रम आप सुन रहे हैं तो लीजिए, अगर जब आप कार्यक्रम बहुत प्रेम प्यार मोहब्बत से सुन रहे होंगे तो चलो हम आपको सुनाते हैं ये गीत।

खूबसूरत तेरा चेहरा, नरगिसी है आंखें, वाह क्या बात है। आओ की तारीफ ही तारीफ, सर से पांव तक सिर्फ तारीफ ही तारीफ। इसे सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ, फिल्म रूही में से निकाल कर सुरेश वादिकर की आवाज़ में पेश हुआ। चलिए हम बढ़ते हैं कार्यक्रम में फिल्म ब्लैकमेल की तरफ। नेकेद इंद्रिय सैफ 1973 का ये गीत ब्लैकमेल का। जानी पहचानी गीत है

पल पल दिल के पास तुम रहती हो। एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए ये शानदार गीत ब्लैकमेल में से निकाल कर निहित इंद्रियों से इवन तक का ये गीत। आपको एक बात भी बता दूँ, जिस समय ये फिल्म बना ब्लैकमेल और कल्याण जी आनंद जी के साज इसमें हैं, एवरग्रीन किशोर कुमार ने गाए और धर्मेंद्र जी को इस पर एक्ट करना था, वही इसका स्टार कास्ट था। तो धर्मेंद्र थोड़ा दुविधा में था, वो डर रहा था कि किशोर कुमार जी का गीत शायद मुझ पर न जचे, क्योंकि वो ज़्यादातर रफ़ी साहब की आवाज़ में एक्ट करता था। तो यही थोड़ा सोचते, लेकिन लोगों ने कहा फिर भी आपको तो करना पड़ेगा, क्योंकि रिकॉर्ड हो चुका है गीत, तो आपको एक्टिंग तो करना पड़ेगा। तो बहुत सोचे समझे फिर भी धर्मेंद्र ने किशोर कुमार जी के ये गीत पर एक्ट किए। आप नहीं मानोगे, ये फिल्म ब्लैकमेल बहुत पॉपुलर हुआ और ख़ास करके किशोर कुमार जी का ये गीत बहुत पॉपुलर, बहुत विख्यात हुआ भारत में, भारत के बाहर भी, और आज तक लोग इसे ये गीत को बहुत पसंद करते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है लोग इसे अवश्य पसंद करते रहेंगे। ब्लैकमेल में से हमने निकाले, तो चलिए ब्लैकमेल के बाद बढ़ते हैं, जी हाँ, असली नकली के ओर। असली नकली के ये गीत आप सुनिए।

फिल्म असली नकली से हमने निकाले ये गीत और पेश किए शुभकामना के साथ आप सभी सुनने वाले श्रोताओं को, आप सुन सकते थे। तो लीजिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, वो है एवरग्रीन किशोर कुमार और आशा जी का ये शानदार गीत। चलो सुनते हैं इस तरह से।

है वही, जी हाँ तू है वही। आरती बर्मन के साथ पर ये गीत हम पेश किए ओवर फाउंड हिंदुस्तानी रेडियो। और ये टाइटल सॉन्ग था फिल्म ये वादा रहा का निकली तुई तख्त का ये गीत। तो लीजिए अगला गीत, अगला गीत हम चलाने वाले हैं और वो ये है क्या ख्याल है। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार, किशोर कुमार जी के बाद एवरग्रीन किशोर कुमार एक बार फिर है।

दिल भर मेरे कब तक सताओगे। जी हाँ, एवरग्रीन किशोर कुमार आपको सुनाए हैं आर डी बर्मन के साज पर, सत्ते पे सत्ता में से निकाल कर ये गीत। चलो देखते हैं, हमने प्लेयर में ये गीत रखे हैं। जी हाँ, नहीं बताऊंगा, बस सुन लीजिएगा।

खाते हैं हम कसम, तुमको ही चाहेंगे, गफलत में मत पड़िए। ये कुमार सानू नहीं था, जी नहीं, ये बाबुल सुप्रियो था जो आपको सुनाए ये शानदार गीत ओवर फाहुन हिंदुस्तानी। www.fahunfm.nl पर आप चुने, जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। एक बार फिर आप सुन रहे फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं, तो क्या ख्याल है मैं आपको ये गीत सुनाऊँ? इस तरह से आ रहा है, देखते हैं। देवानंद का ये फिल्म है, जी हाँ, देवानंद का फिल्म है, क्या ख्याल है।

आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। जी हाँ रफ़ी साहब और गीता जी रॉय, गीता रॉय जी मिल के आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। तो चलिए हम आपको ये गीत और सुनाते हैं। जी हाँ, इसके बारे में भी नहीं बताएंगे, लेकिन बस सुन लीजिएगा शंकर जय किशन के साथ पर सिर्फ़।

दोस्तों, कहे गए हैं कि अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, मेरे और तुम्हारे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। ये कह रहा है श्री कृष्ण अर्जुन से। तो मैं अजन्मा और अविनाशी हूँ, मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपने प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रगत होता रहता हूँ। मित्रों, ये कृष्ण जी अर्जुन से बतलाया। आगे सुनिए। तो जब जब इस धरती पर धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है मित्रों, तब तब अधर्म का विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना हेतु मैं अपने एक नए रूप को रचता हूँ और लोगों के सन्मुख प्रगत होता रहता हूँ। मित्रों, ये कृष्ण जी अर्जुन से बतलाया। आगे सुनिए।

मित्रों, परमात्मा आगे कहते हैं कि मनुष्य मेरी जिस भी रूप की पूजा करते हैं, मैं भी उनको उनकी भावना के अनुसार उसी रूप में दर्शन देता हूँ। तो मित्रों, भगवान आपको शायद पता नहीं है, मगर पता होगा जिसको, तो वो आपको बतला सकते हैं। और हम तो जानते हैं भगवान प्रतिदिन हर इंसान को कोई ना कोई रूप में दर्शन देता ही रहता है, मगर हम जान नहीं पा रहे हैं ना। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सभी से प्रेम से रहो, किसी को गालियां देख के मत जलो, वगैरह वगैरह, क्योंकि ना जाने किस रूप में मैं वहां पर प्रकट हूँ। मित्रों, तो मनुष्य जिस जिस भाव से मेरी उपासना करते हैं, परमात्मा कहते हैं कि मैं उनके उस भाव का ही अनुसरण करता हूँ। समझो कुछ, तो जो मेरा चिंतन करता है, कह रहे भगवान, फिर उसका मैं चिंतन करता हूँ, और जो मेरे लिए व्याकुल होता है उसके लिए मैं भी व्याकुल हो जाता हूँ। वाह, क्या है मेरी परमात्मा। और जो मुझे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता है, मैं भी उसे अपना सर्वस्व अर्पण कर देता हूँ। मित्रों, कितनी सुंदर बात परमात्मा ने कहा है, मगर हम तो विश्वास ही नहीं करते ना। विश्वास करो, भगवान झूठ नहीं बोलत है। जब इस बात उसने कहा है तो करेगा भी ना, मगर तुम्हारे अंदर घुसे तब तो, मित्रों, तब तो।

साथियों, आगे कहते हैं भगवान कि इस मनुष्य लोक में सांसारिक भोग के लिए लोग इंद्र आदि देवताओं की उपासना करते हैं, क्योंकि देवताओं का पूजन करने वालों को उनकी उपासना का फल तुरंत मिल जाता है, तुरंत मिल जाता है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता। मेरे भक्त यदि सच्चे भाव से यदि मेरा भजन करते हैं, भजन करते हैं, भजन, तो भी मैं उनके उसी कामना को पूर्ण करता हूँ। मित्रों, भगवान ये बात बोलता है तो जिसकी पूर्ति से उनका विषयों से वैराग्य होकर मुझ में प्रेम और विश्वास बढ़ता है। मित्रों, इसीलिए संसारिक मनुष्यों को मेरी भक्ति का फल शीघ्र मिलता हुआ नहीं दिखता है, और इसलिए वे मंद बुद्धि मनुष्य कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त करने का इच्छा से अन्य देवताओं का ही पूजन किया करते हैं। अन्य देवताओं को, मित्रों, तो ये बात समझो और आगे बढ़ते रहो, भक्ति करते रहो, भक्ति।

जैसे हवा की झोंके नाव को भटका देते हैं, वैसे ही मनुष्य की इच्छाएं बुद्धि को भटका देती है मित्रों। और जो मनुष्य सुख और दुख में, मान और अपमान में शांत रहता है, वो मनुष्य मुझे अति प्रिय है मित्रों, कृष्ण ये बात बोलता है। तो ये संसार मेरी ही माया है, ये संसार मुझसे ही उत्पन्न हुआ है मित्रों, ऐसे भगवान बोला था है। तो मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ, ये अर्जुन को समझाते हैं कृष्ण भगवान। और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। मैं भूत वर्तमान, भूत मतलब ना जुम्बी योरकानी, भूत मतलब फरलेदन तैत। तो मैं भूत वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तविकता में मुझे कोई नहीं जानता है, कोई नहीं जानता है मित्रों। नोस मनुष्य में कृष्ण बोले अर्जुन से, मगर मी साहब इधर ही। भाई बहनों, समझने की जरूर कोशिश कीजिए, बहुत गंभीर बात कृष्ण बोला रहा है।

प्रिय भाई बहनों, आगे कहते हैं, समझदार व्यक्ति ध्यान करना। समझदार व्यक्ति जब संबंध निभाने बंद कर देता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके आत्म सम्मान को कहीं ना कहीं ठेस अवश्य पहुंची है। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना प्रसन्न करता है। मित्रों, तो जब आपके घन एक गहरा मित्र जो है आपसे रिश्ता बंद करे, कमती कर दे, तो समझ लेना कुछ गड़बड़ी भाई ले मित्रों। और कोई भी तुम्हें बचाने नहीं आएगा, न सही समय, न सही लोग और न कोई चमत्कार। तुम्हें खुद उठना होगा, खुद बदलना होगा मित्रों, और खुद ही आगे बढ़ना होगा। ये सब तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा। और जिस दिन ये बात समझ आएगी, खोपड़िया में बैठ गए, उस दिन से तुम्हारी ताकत किसी और पर निर्भर नहीं रहेगी। तुम अफांकलक दूसरों को नहीं रहोगे मित्रों। ये सही बात है, ये याद कर लेना। अपने बलबूते पे सब कुछ कोशिश करो करने को।

दोस्तों, भगवान कहते हैं कभी किसी का दिल मत दुखाओ, जैसे आप बार बार करते हो, हर कोई के दिल दुखा देते हो, बड़ा बात, बड़ी बड़ी बात वो विघता की देख कर कुछ ना कुछ, नहीं आप नहीं करते हो, बहुत ठीक बात है, मत करना ना अंदर्स हैप्पी प्रॉब्लम यो किसवा बिगी प्रॉब्लम। तो कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि किसी की टूट, ध्यान करना, किसी के टूटे हुए मन की आवाज यदि ईश्वर तक पहुंच गई तो उसका एक आंसू भी तुम्हारे लिए ऐसा तूफान ला सकता है जिसे संभालना तुम्हारे बस में नहीं होगा। बाप रे बाप, क्योंकि जब कोई अपनी व्यथा को इंसानों से नहीं कहता है, अपन प्रॉब्लम इंसान से नहीं कहता है, और वही चुपचाप ईश्वर पर छोड़ देता है, तब वही आंसू मित्रों, वही आंसू के न्याय का हत्या बन जाता है, वही आंसू का हत्या हो जाता है। भगवान ये सब चीज ना फरदरा करे है, तो खबरदार खबरदार मित्रों, लुगबू अनहैप्पी।

0: रहती है।
1: कोई हमारा अपकार करता है तो उससे वास्तव में हमारा उपकार ही होता है, क्योंकि उसके अपकार से हमारे पाप

श्वास श्वास पर प्रभु का नाम लो। किसी भी श्वास को व्यर्थ न खोने दो, क्योंकि क्या पता कि अगले श्वास आए या ना आए।

इस संसार में सभी मुसाफिर हैं, आते हैं और जब ईश्वर का बुलावा आता है तो चले जाते हैं। आज इसका

मैया जिसकी घर के दिए में तेल नहीं, वहां जोत जलाऊं मैं कैसे। मेरा खुद ही बिछौना धरती पर, तेरी चौकी सजाऊं मैं कैसे।

जग की रचना रचने वाली तेरे हाथ हजार, इस भवसागर में है तेरे नाम से बेरा पार, फिर भी तेरे द्वार से मैया खाली कोई न जाए।

महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो संदेश दिया वो गीता के नाम से प्रसिद्ध है। उसी संदेश को मैं एक छोटी सी भाग इस रचना में प्रस्तुत कर रहा हूँ।

वक्रतुंडा महाकाया सूर्यकोटी संप्रभा निर्विदिनं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा।

ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरुर साक्षात पार ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः।

पिताचरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। सभी सुनने वालों को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं हूँ आपके सेवक संजय और आपके साथ जुड़ गए हैं।

जो बीमार है भगवान से यही प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आए। जिनके घर पे एक नया जीव जन्म लिया है तो उन्हें बहुत बहुत सा बधाई दिया जाता है।

जिनका सालगिरह है आज, उनको भी बहुत सा बधाई। और ये कहना चाहूँगा कि वही श्रेष्ठ है जिसमें शब्द कम और विश्वास ज्यादा हो, अहंकार कम और प्रेम ज्यादा हो। और सभी प्यारे प्यारे बच्चों को भी नमन करता हूँ

सभी नाना नानी दादा दादी सभी जो इस समय कार्यक्रम को सुनते हैं, हार्दिक से अभिनंदन। और ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपकी अंतर आत्मा आपका अच्छे मित्र है, उसकी बार बार सुनें।

इसमें भी जोड़ देता हूँ कि जिंदगी बहुत छोटी सी है, इसे ऐसे लोगों के साथ बिताइए जो आपको हंसाए और आपको महसूस कराइए कि आप उनके लिए जरूरी है। अपना वह होता है जिसके साथ बातें खुलकर की जा सके, ना संभाल कर।

किसी ने क्या खूब कहे हैं कि खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर कम हमेशा। भरोसे मंद इंसान के साथ बांटने चाहिए। तो इन पे जरूर ध्यान देना कि भरोसे मंद इंसान के साथ बांटने चाहिए, इस पे जरूर ध्यान दे। सुंदर सा भजन के ओर बढ़ते हैं।

राधा गोरी, और ये सुंदर सा भजन जो इंद्रेश उपाध्याय की ओर से हम सब सुने। इंद्रेश उपाध्याय ने 2025 में ये गीत को और ये भजन को लिख करके अपने आवाज दिया। सुनो लो, आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत हुए। रेडियो का डायरेक्टर श्रीमान कुमार घेराव की ओर से ये संदेश रखा जाता है। कहते हैं कि माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा मानना गया है। माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है, क्योंकि ईश्वर भाग्य से सुख और दुख दोनों लिखते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख ही लिखते हैं। हमारे डायरेक्टर श्रीमान कुमार घेराव जो और भी रखते हैं कि कहने से कठिन सुनना होता है और सुनने से कठिन सहना, पर सबसे कठिन होता है सब भूल जाना और सामान्य रहना।

हम एक और भजन की ओर बढ़ने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि समय सब कुछ बदल देता है। जरूरत सिर्फ सब्र की है।

फाउन रेडियो के सभी कोलेखा जैसे गंगा जी, सुरेन, भगवान दीन, राजन, द्वारका, जॉनी, सुरुजबाली, शांता खेमाई, श्याम पूरन, रोसिता गिरजा सिंह के ओर से ये सुंदर सा भजन जो प्रस्तुत किया जाता है।

सुनने वालों, कहते हैं कि आपके कर्म निश्चित ही आपसे मिलने आएंगे, क्योंकि यही आपके सच्चे साथी है। जब संसार के सारे चेहरे बदल जाते हैं, तब भी आपके कर्म आपके साथ खड़े रहते हैं, आपके भाग्य का निर्माण करते हैं।

में हम जानते हैं कि कदर किरदार की होती है, वरना कद में तो साया भी इंसान से बड़ा होता है। जैसे कि अभी आपने सुने कि कद में तो साया भी इंसान से बड़े होते हैं, इस पे आगे क्या लिखा गया अपने स्वामी स्वयं बनो, आपका सम्मान उन शब्दों में नहीं है जो आपके सामने कहे गए, बल्कि उन शब्दों में है जो आपकी अनुपस्थिति में आपके लिए कहे जाते हैं।

ताकतवर होकर भी झुक जाना श्रेष्ठ गुण है, लेकिन श्रेष्ठ होकर भी सम्मान्य रहना सर्वश्रेष्ठ गुण है।

कहते हैं कि रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होती है, जिधर प्यार मिले उधर की ही घूम जाते हैं।

सुनने वालों, ये सुंदर सा संदेश कि रिश्ते तो सूर्यमुखी के फूलों की तरह होते हैं, जिधर प्यार मिले उधर को ही घूम जाते हैं। ये प्यार भी क्या चीज है ना, क्योंकि प्रतिदिन एक नेक कार्य करे, प्रतिदिन एक नेक कार्य करे

इंसान के लिए इंसानियत बने। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि सूर्य के किरणों निकल गए और एक आपके शुभ दिन प्रस्तुत किया जाता है।

प्यारे प्यारे बच्चों जो इस समय अपना तैयारी में लगे हुए हैं स्कूल के ओर पढ़ने के लिए, तो ये कहना चाहूँगा कि दोस्त किताब रास्ता और सोच सही हो तो जीवन बेहतरीन बन जाता है।

तक पहुंच जाती है। आप सभी को एक वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। और हमारे दोस्तों, हमारे कोलेग खास जो है राजेश बदलू, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, बबली आसरा, अमित अवतार, रोमियो हाउस, करण सिंह, यूसेफ सेतु, मफरो रहीम बख्श और अनुराधा चंदर, राजेंद्र सिंह और हैन की ओर से एक और सुंदर सा भजन की ओर हम बढ़ेंगे।

कुछ खो कर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य लौटता है, फिर चाहे वे अच्छे हो या बुरा हो।

कर्म का महत्व क्या है ना, देखा जाए कि कुछ खोकर लौटे या ना लौटे, लेकिन कर्म अवश्य ही लौटता है, फिर चाहे वे अच्छे हो या बुरा। कहते हैं वही कर्म करो। ये शरीर जो हमारा मिला है, इसे वही बीज बो जिसे आपको वो फल मिले जिसमें मिठास भी रहे और भविष्य में कोई कष्ट ना पहुंचे।

बात भी हम जानते हैं कि मनुष्य का सबसे सच्चा साथी उसका स्वस्थ है। जिस दिन स्वस्थ ने साथ छोड़ा, मनुष्य हर रिश्ते पर बोझ बन जाता है।

तो ये कहना चाहूँगा कि बोझ बनने के लिए कुछ न कुछ तो व्यवस्था करना पड़ता है। और ये आशा रखे कि बोझ ना बने, तो मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, मन खराब हो तो शब्द खराब ना बोले, क्योंकि बाद में मन अच्छा हो सकता है लेकिन शब्द नहीं।

और यही मांग रखना कि अपनी दया का भाव मेरे अपनों पर सदा बनाए रखना।

कि सुनो लो, कहते हैं कि जिंदगी में किसी का साथ ही काफी है, कंधे पर किसी का हाथ ही काफी है, दूर हो या पास क्या फर्क पड़ता है, अनमोल रिश्ते का तो बस एहसास ही काफी है।

जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, जीभ में कोई हड्डी नहीं होती है, लेकिन अच्छे अच्छे को काट या जोड़ सकती है। इससे सावधानी से प्रयोग कीजिए।

इसी कारण हम सब यहां से रेडियो बनाते हैं और यही मकसद रखते हैं कि किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत दौर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज रहे।

सा पेड़ है जो प्रेम से झुक जाता है, स्नेह से पनप जाता है और शब्द से टूट जाता है।

ये संबंध भी क्या चीज है ना। कि संबंध एक ऐसा पेड़ है, पेड़ कहते हैं वृक्ष को, जो प्रेम से झुक जाता है, स्नेह से पनप जाता है और शब्द से टूट जाता है। तो वही शब्द प्रयोग करो, क्योंकि शब्द को अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता है दोस्तों। शब्द को अपने जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता दोस्तों।

क्योंकि धैर्य वे गुण हैं जो तुम्हें हर तूफान के बाद भी स्थिर खड़ा रखने का ताकत देता है। धैर्य रखना

और अपनी जिम्मेदारी भूलना नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे बेहतरीन दवाओं में एक है जिम्मेदारी। क्योंकि सबसे बेहतरीन दवाओं में एक कहा गया है जो हमारे जिम्मेदारी है। जो भी इस दवा को एक बार ले लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है। क्योंकि भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, भूमि और भाग्य का एक ही स्वभाव है, जो भी बोया है वो ही निकलता है। तो वही खेती करो,

लेखक ने बड़ा अच्छा लिखा है। उनका ये कहना है कि अच्छे लोग टुकराए क्यों ना जाते हैं, क्योंकि ये ना गलत रहते हैं और ना ही गलत करते हैं, इसीलिए ये बहुत कम लोग को पसंद आते हैं।

सुनो लो, मैं आपका सेवक संजय और कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करेंगे। कहते हैं कि किया गया कर्म और दिया गया धोखा बिना भुगतान के पीछा नहीं छोड़ता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है ये आप खुद समझदार है, या कर्म के रास्ते पे चलेंगे या धोखा देने का इच्छा रखते हो।

मैं हूँ संजय और कुछ ना कुछ तो सुनाते रहेंगे, क्योंकि किसी ने ये भी कहा है कि डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी। डर से बड़ा कोई वायरस नहीं और हिम्मत से बड़ी कोई वैक्सीन नहीं। तो हिम्मत जो है तो वैक्सीन का क्या।

क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, जैसे इस गाना का धुन भी बदल गया। वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदल जाता है, लोग भी, रास्ते भी, एहसास भी, और कभी कभी कभी हम खुद भी बदल जाते हैं। दोस्तों, आप अपने आप को किस प्रकार से बदलने चाहते हैं? क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं।

जैसे कि अभी आपने सुने। नो मैटर्स, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने गलत रास्ते पर कितना समय बिताया, आप हमेशा लौट सकते हैं। लौटने का रास्ता बस ये मत गवाना।

क्योंकि कहा गया कि असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह नहीं है जो हम कर नहीं पाते, असंभव वह है जो हम करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि जिसके परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है।

और कैसे आपको सुख को प्राप्त होगा, क्योंकि किसी ने यह भी कहा है कि जो चीज तुम्हारे लिए बनी है, जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो चाहे देर से आएगा लेकिन आएंगे जरूर। बस धैर्य रखो और खुद को बेहतर बनाते रहो, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों को साथ देती है।

याद रखना, ये किस्मत भी क्या चीज है ना, क्योंकि किस्मत भी मेहनत वालों का साथ देती है। और जो साथ देती है तो वो बस ये तीन शब्द जरूर कहते हैं। छोटे छोटे शब्द है, मैं हूं ना, और मैं हूं ना आपके द्वारा कहे गए ये तीन शब्द किसी परेशान व्यक्ति के जीवन में ऊर्जा भर सकते हैं।

खुशी के लिए बहुत कुछ। खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, क्योंकि ऐसा हम समझते हैं। और ऐसा हम क्यों समझते हैं? किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। दोस्तों, जैसे कि अभी आपने सुने कि खुशी के लिए बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु हकीकत में खुशी के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव करता है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है।

दौलत उधार मिल जाती है, पर इज्जत सिर्फ अच्छे कर्मों से कमाई जाती है। और सम्मान कोई बैंक नहीं होता है। सम्मान कोई बैंक नहीं होता, उसकी गारंटी सिर्फ आपका चरित्र देता है। दोस्तों, अगर खुद से नहीं हारे तो जीत निश्चित है। खुद से हारने का बस ये अपने दिमाग से निकाल दे। तो जीत निश्चित हो जाता है। क्योंकि कहा गया कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, लोग बहुत अच्छे होते हैं अगर हमारा वक्त अच्छे हो तो।

यह भी हम जानते हैं कि जीवन भी ठीक एक स्टेशन की तरह है। आप तो जरूर ट्रेन स्टेशन पे गए होंगे। इसी प्रकार से जीवन भी ठीक स्टेशन की तरह है। भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। हम इस संसार के मेला में रह रहे हैं और ठीक जीवन भी एक स्टेशन की तरह ये संदेश भीड़ बहुत है पर अपना कोई नहीं। क्योंकि कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और उसे कौन बदलता है? उसे मजबूर कौन कर देता है? कहते हैं कि लोग और वक्त और हालात। कोई भी इंसान हमेशा एक जैसा नहीं रहता है दोस्तों, उसे बदलने पर मजबूर कर देते हैं। और ये मजबूर करने वाला लोग, वक्त और हालात।

है कि जीवन के पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। जीवन के पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए कड़े संघर्षों से होकर के गुजरना पड़ता है। याद रखो, कि पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट और बर्दाश्त करनी पड़ती है।

बात को जरूर आप कहीं ना कहीं सुने होंगे। क्योंकि जीवन में पद प्रतिष्ठा और सम्मान पाने के लिए संघर्ष से होकर गुजरना पड़ता है। और याद रखो, पत्थर को भी भगवान बनने के लिए हथौड़े की चोट बर्दाश्त करना पड़ती है।

मन की सोच सुंदर हो तो मन की सोच जब सुंदर हो तो सारा संसार सुंदर लगता है। और मन की सोच जो सुंदर ना हो तो जब सुंदर ना हो तो मैं ये आपके ऊपर रख देता हूं।

नशा जिंदगी जीने का होना चाहिए। और ये नशा जब जिंदगी जीने का होना है तो आप जीने में भी मजा लेंगे। उम्र चाहे जो भी हो, उम्र चाहे कोई भी हो, बस धड़कनों में नशा जीने की, और क्या जीने की, जिंदगी जीने की। कहते हैं कि प्लसीर हबन इन अतलीफन,

क्योंकि एक न एक दिन तो कहा गया है कि हम कहानी बनकर के रह जाएंगे हम सब

कहानी बनकर रह जाएंगे हम सब। बस कोशिश रहे कहानी अच्छी हो।

और दोस्तों शायद इस बात को भी आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो संजय किस कारण यहां बैठे हैं। क्योंकि बिना रुके सफर कर रहे हो, और किस चीज का सफर? उम्र का सफर। उम्र बिना रुके सफर कर रही है। सफर कर रही है और हम क्या करते हैं? हम अपने ख्वाहिशें लेकर वहीं खड़े हैं। आप इस ख्वाहिशों को छोड़ सकेंगे? कि ये उम्र कहीं रुकती नहीं है। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना। कहते हैं कि उम्र बिना रुके सफर कर रही है।

क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। और हमें क्यों टाइम नहीं है? कहते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतरीन दवाओं में से एक है जिम्मेदारी। लेता है फिर उसे कभी थकान नहीं होती है।

क्योंकि खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसे मंद इंसान के साथ बांटने चाहिए। और आप किसको भरोसा कर सकते हैं?

एक संत ने भी बड़ा अच्छा कहे थे। एक संत ने बड़ा अच्छा कहा था कि जीवन का असली सच प्रेम हो या भोजन, किसी को ज्यादा दे दो वो अधूरा छोड़कर चले जाता है।

सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता।

दोस्तों, इस बात को गौर से सुनो कि माँ बाप वृक्ष के उन पत्तों की तरह है जिनकी छावा में तुम्हारा बचपन पला है। उनके इस उपकार को याद रखना और बुढ़ापे में उनका सहारा बनना।

क्योंकि कुछ समय जब बीत जाता है जीवन का, तो जिसे हम शायद बुढ़ापा कहते हैं, वो कुछ भरोसा करने लगते हैं अपने बच्चों पे। धीरे धीरे ही सही पर सब हासिल होगा।

धीरे धीरे ही सही, पर सब हासिल होगा, जो कुछ खोया था अब तक सब वापिस होगा। यही सोचते हैं, क्योंकि इस बार भरोसा गैरों पर नहीं खुद पर है।

ऐसे किए भी आपने सुने? माँ बाप कभी गलत नहीं होती। माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

Jan nenne. माँ बाप कभी गलत नहीं होते, बस उनके कहे गए शब्दों का मतलब हम देर से समझते हैं।

है कि माता पिता को ईश्वर से भी बड़ा माना गया है। क्या है इसमें? इसमें भेद क्या है? क्योंकि ईश्वर भाग्य से हमारे सुख और दुख दोनों लिखते हैं, जबकि माता पिता केवल सुख ही लिखते हैं।

आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप बदल नहीं सकते।

हो सके तो अगर अपने जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना। जीवन में कभी अवसर मिले तो किसी के सारथी बनना, ना कि स्वार्थी। क्योंकि स्वार्थी कुछ और होता है।

घर में सुख और शांति का ऐसा वृक्ष लगाइए जिसकी छाया पड़ोसी के घर भी जाए।

क्योंकि इस बात को भी याद रखना, हमेशा याद रखना, जीप कभी नहीं फिसलती है। हमेशा याद रखना, जीप कभी नहीं फिसलती है। दिमाग में जो चल रहा है वे हमेशा जीप पर आता है। तो इस बात पे कुछ और रखना चाहता हूं, गुरु जी ने इस बात को कहे थे, कि पैरों का गरम, पैरों का गरम पेट को नरम और सिर ठंडा रखे।

क्योंकि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है।

समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छे होने में समय नहीं लगता।

बचता है क्या? बचता है कि सबर करना सीख लो, सबर करना सीख लो, क्योंकि तुम्हारा वक्त आएगा तो बिना मांगे सब मिल जाएगा।

चित्र और चरित्र किसी की पहचान में मोहताज नहीं है।

पित्र मित्र चित्र और चरित्र। ये चारों अपना परिचय स्वयं देते हैं।

दोस्तों ये गलत फैमिली में ना रहे। कि हम गलती नहीं करते, क्योंकि गलती पीठ की तरह होती है। गलती पीठ की तरह होती है, औरों की दिखती है अपनी नहीं।

ने कहा है। ये बुजुर्गों भी क्या क्या कह गए। बुजुर्गों ने कहा है कि रूप और रुपया पर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। ये रूप और रुपया, इस पर कभी घमंड ना करें दोस्तों। क्योंकि ये इंसान के पास सदा नहीं रहते हैं।

जहाँ तक हम आपके साथ दिए कुछ समय तक, यही आशा लेकर कि कुछ न कुछ और आपको अच्छा लगा होगा। यही कहना चाहूंगा। सुनते रहना फाहून हिंदुस्तानी रेडियो। इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक शहर, हर एक कोने, हर एक स्थान पे

क्या खूब फरमाए हैं बॉलीवुड लेटेस्ट सॉन्ग्स के साथ। मैं हूँ आपका सेवक संजय और कुछ ऐसा नया नया गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप सुन रहे हैं फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो, इंटरनेट द्वारा दुनिया के हर एक प्रांत में सुना जा सकता है।

कहा जाता है कि सुख चाहते हो तो रात में जगाना नहीं, शांति चाहते हो तो दिन में सोना नहीं, सम्मान चाहते हो तो व्यर्थ में बोलना नहीं, और प्यार चाहते हो तो अपनों को छोड़ना नहीं। और यही बात के लिए मैं संजय आपके साथ जुड़ गए हैं। कुछ बॉलीवुड न्यू सॉन्ग्स के साथ

फिल्म साहिबा से निकाला गया। ये फिल्म जो 2025 का सॉन्ग्स में बिलोंग होता है और बॉलीवुड में जो हर साल में लगभग 2000 फिल्मों बनाया जाता है, जब देखा जाए कि 2017 में कहा जाता है कि इंडिया से सिनेमा 1986 स्पेलफिल्म्स जो बनाए थे, वारफन हेत ग्रोटस्टा आंतल 364 इन हेत हिंदी वास,

स्त्री टू से निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो बॉलीवुड 2025 के सॉन्ग लिस्ट में बिलोंग होते हैं।

क्यों ना इसे दोहरा दिया जाए। तो क्या खूब कहा गया है कि संबंध कभी जीत कर नहीं निभाए जा सकते। संबंधों के लिए झुकना होता है, सहना होता है, दूसरों को जीतना होता है और स्वयं हारना होता है।

खेल खेल फिल्म का नाम और दलजीत के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। दलजीत जो एक पंजाबी सिंगर

सिंगर चौबीस में अपना कॉन्सर्ट एम्स्टर्डम डोम में भी दिया। और दोस्तों, किसी ने कहा है कि आप अपना दिन इतना सुंदर बनाइए, इतना खुश रहो कि दुनिया वाले भी परेशान हो जाए कि इसे किस बात की खुशी है।

0: het jaar Pachis mee releasen we je film. सुनने वालों हमारे देश में भी कुछ पुरानी फिल्मों जो चलाया जाता है गर्मी महीना में और बियोस्कोप में तो कुछ फिल्मों के नाम अभी मैं आपके साथ जरूर शिकर करेंगे बियोस्कोप में और जैसे पुराने फिल्मों का नाम मैं सिकर करता हूं तो शोले सिलसिला इस प्रकार की फिल्मों खास करके इस साल सूरीनाम में भी ऐसा कुछ किया जाए तो अगर आपके मन में भी ऐसा फिल्म फेस्टिवल देखने का इच्छा है अगर आपके पास इंटरनेट है तो जरूर गूगल महाराज पे और सर्च कीजिए कि इस साल कौन कौन सा फिल्म आपके लिए रखा जाएगा क्योंकि हमारे देश में ऐसा और प्रोग्राम को बनाया जाता है इसी तरह से सूरीनाम में भी अगर आप वेकेशन से गए होंगे तो गर्मी महीना में हर साल की तरह इस साल भी कुछ कार्यक्रम को रखा जाएगा
1: यीशु के बगैर ये शंभू

0: समाज के बारे में आप हमसे ज्यादा सोचती हैं।
1: क्योंकि सखी इस महल में नहीं अपने श्री के मन में रहती है।
2: अरिजीत सिंह जी के आवाज में ये सुंदर सा गीत सुनने को प्राप्त हुआ। एक फिल्म जो रिलीज हुआ 2025 में, विकी कौशिक जी ने अपना कला से अभिनय किया।

सुनने वालों, ये भी एक गीत निकाला गया 2025 फिल्मों में से। समय के ओर जब देखा जाए कि किस ओर बॉलीवुड भी जा रहे हैं, और कहा जाता है कि 2024 में काफी बड़े बड़े फिल्मों निकले।

समय से सब कुछ मिलता है, समय से सब कुछ मिलता है, समय से पूर्व की चाहत और दुख का कारण बनती है। एक और बॉलीवुड का प्लेलिस्ट 2025 के ओर हम बढ़ेंगे।

Useful Five σε Νικάλα Γκαϊαγέ Σούντα Σαγκίτ. Comedy film. जिसमें अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन, रितेश देशमुख, फर्नांडस, ढेर सारे फिल्म एक्टर्स इस फिल्म में अपना अभिनय दिए हैं. दोस्तों, शायद आपने कभी ये प्रश्न नहीं किए होंगे, पर यहाँ जब देखा जाए कि बॉलीवुड एक ऐसा बड़का फिल्म इंडस्ट्री है, जिसमें कहा गया है कि लगभग एक फिल्म में 4 गीतों के साथ मिनिमम रखा जाता है, जब गिनती में देखें कि 500-600 फिल्म तो साल में बनी जाते हैं, और उसे जब हम 4 से जोड़े तो लगभग 2400 गीतों का तैयारी हो जाता है साल भर में. से हम जब आगे जोड़े लगभग 15 साल से, तो 36,000 सॉन्ग्स हो जाते हैं.

प्लेलिस्ट 2025 में से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। द फर्स्ट सॉन्ग रिकॉर्डेड इन इंडिया बाय गौहर जैन इन 1902। गीत जो रिकॉर्ड किया गया 1902 में। एंड द फर्स्ट बॉलीवुड फिल्म अलम आरा 1931।

शायद इस बात को भी आप जानते होंगे। उस समय के बाद जो हमारे समय आते थे, इन द यार 60, द यार 70, द यार 80 en 90, जिस समय कैसेट टेप्स के समय कहा जाता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग तो बस 2000 से शुरू हुआ। सैदी के बाद

आप खुश हो, अच्छे बात है। आपकी वजह से कोई खुश हो, ये सबसे अच्छी बात है।

दोस्तों सॉरी बोलने में कंजूसी मत करना। कोई कभी ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अपना हार मानने को नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि 70 साल से भी ज्यादा होने पे एक दूसरे से और बिखर जाते हैं। बस यही कि सॉरी कहना नहीं आता है। तो दोस्तों सुन लो, इसमें कंजूसी ना करे। यहां तक था मैं आपका सेवक संजय। कुछ बॉलीवुड सॉन्ग्स 2025 के लेकर, शायद हमारे समय का नहीं हो, पर हम इसी समय में जी रहे हैं। Wish you a very good day.

कुर्सूरी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फरहूर बेड्रेव Amalia. Zeer zuinige auto's zoals Toyota Premio, Toyota Raktis, Toyota Fits. Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 418873. Autoverhuurbedrijf

Καλά να γιάνει ούχνιτς, καλά να γιάνει για τσορστιμάτα DJ Χαμκο απνί ασυρμάτε. तमाम रेडियो फाउन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार प्यार बढ़िया दाम सत श्री अकाल जॉनी नंबर वन है हमारा नाम आज का देश और विदेश का समाचार सुनाना है हमारा काम यही है हमारा मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी हम आ गया है रेडियो उफाहुन में और आज भी आप लोग को हम पूरा पूरा सूरीनाम से लेकर और अन्य देशों की सफर को कराएंगे और करा कर ये घंटा का न्यूज आप लोग को हम सुनाएंगे हमारे प्यारे प्यारे मौसी मौसा आजा नानी सूरीनाम में भैया देखो का भइल है आदमी एक मिला भैया चढ़ल है नरियर के पेड़ पे तो बोली जॉनी गइल हो नरियर के पानी पिए ना मामी ई एगो भैया रहा जोंकी तो ई पेड़ में से फुरुक्तु रोक्तु तूर के और जाए के बेचत रहा वही से अपन मलिया कीनत रहा मलिया कीनत रहा जाने फूके वाला तो और काम बोले है सुनो इफी नो इफी करे वाला भैया जुंकी रहा बताए गए है ये ब्रेन हार्ट स्ट्रांड के बात है और सोमवार के ये आदमी पेड़ पे चढ़ल है तो ये पेड़ पर से गिरल है भैया ये आदमी गिरल है और गिरल है एगो स्केटिंग पे गिरल है भैया हाँ मौसी एगो स्केटिंग पे गिरल है मुखलक है और स्केटिंग वहाँ पे गिरल है और ये आदमिया मर गए हैं मैं ब्लैक भैल है नानी ब्लैक भैल है जैसे बतावे हैं बकेंद ड्रग्स फसलाफ्द एंड फरकोख्त फ्रिक्तन इन द बूर्ड और बतावे हैं सिपाही ये गैल है तो बोले मुखलक है ई बोले है पेड़वे पीकर हार्त रुक गया रहा ओम द स्वार स्वार ओफर दूसिस दूसिस मतलब कि दृक्षवा बहुत हेवी वाले रहा अब पेड़वा चढ़ल हुए पकर हरतवा रुक गए तो गिर के दोस्तों तो सब सोचे गिरे पे मरल है लेकिन वो गिरे पे ना मरल है वो बोले ऊपरे मर हो गए या एक बारे में बतावे हैं इन खस्काकल आर्ट स्टेल खींच एक बार फरवोंडिंग op het lichaam vast. Het vermoeden bestaat dat deze NP in de boom als mogelijk als gevolg van een overdosis een hartstilstand kreeg en vervolgens naar beneden viel. To abbe deko bhaiya hamne jani kyanidi kaunchi bhaiya दुई तरह से बन गया ना से का बोले स्मोकल करी से सरनाम में ई कौनी कौन दो देशी भैया गाई कायनी है कि कौन ची है दुई तरह सबन काम बोले है एक अन अन स्मोकल करी से भैया सूरीनाम से गयाना से तो बताए गए है रुक रुक में लदान है ये एगो खेमिस प्रोडक्ट है भैया आप करवाने में हम बताए ये कौन ची है ये एगो खेमिस प्रोडक्ट है शेर क्रख्त स्नेल वर्कन द खेमिक स्टॉफ इन द एक्सट्रीम गिफ्टिग एयर फॉर मेंशन एंड डीरन हेल्प ब्लॉकेड आदमहाली फॉर द सेल एंड वार्डोर लेखाम खींच स्टॉफ मेरकान खबर आइकन
इतना खफार चीज सबन ओके गयाना से हबड़ा करी से और एक के सब का करे से सोना खोजे भैया और यही सब चीजों सबन सर मक्का पर मक्का बिगी सो जहां उतरा मछली मर गए हैं। इंडस्ट्री बोले हेड वॉर खब्रेक इन मेटल एंड खीमिस इंडस्ट्री वे फूड बिल फॉर हेड विन एंड फन खोट हाँ और बोले हेड वॉर फ्राई बेड फॉर ब्रांडिंग फॉर कुस्ट ऑफ एंड सोआल्स पीवीजी जरियत यही सब चीजों मिले भाई तो हम बता दिली तरीके कर बारे में हम खोज ली कौन ची है हमें तो मालूम ना रहा मैं बहुत खफार चीज है तो एक एक गयाना से सबन स्मोकल करके लाई से सूरीनाम में बले एक बार है सोना खोजे के अतुल जाने यही सब चीजों पुलिस ब्यूरो में से कंटेनर चोरी भेल है आज तक पता ना मिलल कहाँ गेल है। तो अब इकिया गयाना से स्मोकल भइल और गयाना में दुई गो भैया तुरक लात के चिजुआ अब जात रहा पारा मारी बो तो लोन जाने हो एगो जगह का नाम बा चिजुआ हबड़ा भले ब्रंच साइट में भैया तुरक बे ब्रंच साइट हुआ पे सबन दुई टन फर्मुडलक केमिकाल ये मुआसबन पकड़ी से और बोले है ब्रिंस साइट में तुल जानो हुआ कोरोनी के हुआ पे जाने सबको ये निकेरी जाए आवे है तो जे के उस सब मांगे रुकावे भैया लेख दिमासिया सीताके हैं और एनख रास्ता है जो गयाना से और कोरोनी से परमारी वो जा है अरे मतलब कि निकेरी से जिस गयाना से निकेरी निकेरी से कोरोनी कोरोनी से सरमक्का सरमक्का से तो फिर शहर चल जाइयो तो ओके हुआ कोरोनी के ब्रंच साइड पे रुकाई से और हुआ पे ट्वी टन सबन पाई से मटेरियल ऑन द स्केप बोले और बोले द पार्टे वेट में ट्वी ट्रिक्स फॉर फूड एंड सो फॉर अ खियान ऑफ इलीगल वेजेस सुरीनाम से इन बिन खबरा भाई तो ट्रिक हुआ कैसे आए गयाना तो भैया तो रोड पे आई हुई फिर लदान हुई और बताई गई है गा द लादन से खमाक फन आन मेर स्टेकर इन निकेरी में गो एगो स्टेकर सबन बनाए रहा हुए पे सबन इची जुआ लादे रहा फन दार है सो वेर मटेरियल ऊपर वे फेर दे सेन फॉर फूड और बोले तो दा द ट्रिक्स बेर कंट्रोल पास फन ब्रो तक निकेरी से चीज हबड़ा हुई गए है तो ब्रो इनसाइड पे जिसको तू नारद भैया ती मलिया हबड़ा हो जात तो निकेरी के अनमेन सिपाही हुआ सोना पाई से कि निकेरी केरी में का हुए हैं और बोले इनफॉरमेंट इस चीज के बारे में तीन मिला पकड़ान है जो ट्रांसपोर्ट करता चीज हुआ भाई रवैया बोले ना ऑन द स्केप इन साउस एंड आन का कीफन की बोले हैगा लदिंग वो सब ऑन द सुख हुएगा और बोले प्रोडक्ट भी ऑन द सुख हुए कि कैसे है तो एक बारे में बोले और दई लखाई होगा बोले ओ को ऑन द सखवार है मटेरियल परसीज फंदान एस क्यों कहां से आयल है ओ पीठवन खोजे है हमारे मौसी तो ये बात है सूरीनाम के हमारे जनता हमारा सनाम किसी पाई रोदल इस पे भाई रोदल इस पे ना सब भैया इतना बनमासी होवे इसको उतुलन करे हुआ भैया कि परासी में से क्वेक क्वेक चोरी हो गए अब एक एगो सिपाही फीन पकड़ान है मौसी बहुत बेइज्जती के बात है हमारे सूरीनाम के स्कूतु के हमारे सूरीनाम के स्कूतु के बड़ी बेइज्जती के बात है ना सबके बोली लामा बड़ा ढेर हो गए भैया एगो तो बोली एगो रोता आपल हो सके मार बोलेगा ऐसे मेयर रोता आपल्स हो गए भैया तो यहाँ बतावे है कि ट्रॉलीस जाने को जो भैया दुई गो ट्रॉली फॉल भैया गांजा भर के और एगो सिपाही भैया सिपाही 40 किलो भैया गांजा एगो कॉफर बाग में लाद के एगो बीस में ट्रॉली में अपू यात्रा पारा मारी बो वही के कोली हुए ढल्ले इसको उतुए के पकड़ी से वही ब्रेनजाइट पे भैया जहां पे सबन पुलिस पोस्टवा है वेस्टर्न फांसरी नाम निकेरी के हुआ पे द पुलिस वेट सेड एकन कोली खास आन कहोदन ना दैट इन अ कॉफर बाग फांस ऑल्टो ट्वी ट्रॉलीज में इन तो 40 किलो सॉफ्ट ड्रिंक्स रहा हमारी जनता तो हमारा देश बड़ा
ज्यादा भैया तो हमारा मनोरथ जो उन्हें मिनिस्टर फाइनेंशियल पॉलिसी बोले नो टेस्ट मी बाकी ओ कसी पहिए नहीं के टेस्ट करे और ये भैया हाथ मैल के रह जात होई मनोरथ कुछ कर न पावे है हेड हाथ ओमेगो अख्तन डर तक के यार के सिपाही है ट्वेल्थ क्लास के बोलेगा दी इस द वर्कस्टेल ऑफ ए पॉलिसी ब्यूरो फॉर ग्रोनिंगन ओ ग्रोनिंगन के सिपाही रा भैया शर्मा का के हां शर्मा का ग्रोनिंगन के सिपाही रा भाई फॉर नो मन वर्ड द पॉलिसी मान सो मार के निकेरी से उनको रोनी गेल है और हुआ सबन ओके पकड़ ले से 40 किलो गांजा से और अपन ट्रॉली में धल्ले राख जैसे कोई हॉलान त जा फकांसी से जा भैया कपड़ा लत्ता लेके दुई ट्रॉली कोफर बाग में धल्ले रहा अपी भैया के नरकोटिक ब्रिगेड पकड़ के ले गए है दुर्ग साक के बारे में बाकी भाई हम का बोली हमारा प्रेसिडेंट जो देश के है और वो है प्रेसिडेंट सिमोन तो अपरे भैया बड़का बड़का लुटेरा जोन हमारा देश के चोरी करके और हमारा कास्क सरफस जोन दोन करी से ओके खरास सीध करे भैया ओके बचावे है चोरन के अबे देखियो हुफदराट के भिने ले आवे तो ये छोटा छोटा सिपाही दुई स्त्रीपी के है वो कौन खेत के मुल्ली है प्रेसिडेंट ये मुतखुई फोर बेल साइन मैं तो ही पोडियम पे बोले रहले कि चाहे हमारा आदमी चाहे जेकर आदमी है बोले जे तू स्ट्राफ वाला फेट करिए द मुझे बेला ओएम खान बोले हम तो के लीफर करब ओएम के और अपरे गैल हैगा तरक के छोड़ाई से और इतना सिपाही लोन हैगा जो इधर उधर बनमासी करे है और पकड़ा है हमारे जनता तम बोली अबे हम मनोरथ के ना छोड़ मनोरथ भैया तू का करे है अब भैया हुआ के अंदर नीमर जो सूरीनाम में है अब रात के ना सूद पावे है नानी इतना लुटेरा देशवा में होई गए हैं जहे देखियो रूफ होवे ई होवे ऊ होवे तो ऐसे बांचित है 3 और 4 बजे सवेरे के बाद है हमारा आनी शनिचर और अतवार धरियन त्विंतक ऑगस्टस के मां थे एक घर में एक अनीमर बहुत मीठा मीठा सपना देखत रहा मार्टिन लूथर किंग वेक में और भैया ओमा जाई के 4 गो क्रिमिनल घुसल है पिस्तौल ले के भाई और ई जोन काबल अंदर नहीं मर रहा है यहाँ बतावे है एगो फिर फेफ तक यार के आदमी है सेकी के नाम है और देखे प्रोसेलिंग ओकर घर में मास्कर पहिर पहिर लुटेरा बा और एक से पूछे एकर मुंह पे बिगी से एगो कपड़ा अने द ओवर फ्रॉम प्लाट्स एंड दुक ओवर एंड होफ और ओकर हाथ सबन टायर व्रप से बांध दी से और बांध के पूछे पैसा कहाँ है और ई भैया काबल अंदर नहीं मर जो रहा उ ना मांगे बतावे वेखर करे पैसा बतावे के जोन उलकवाए रहा मैं इतना मार खाई से दमिया की के कबूले के परगे के पैसा कहां लुकवेली है मौसी तो ई मार ओके मारी से भैया कि इतना क्लाक करे बोलो कर दी भर पिरा है हमारे नानी और बोले हम पैसा प्लेटफॉर्म में लुकोई ना फ्लीरिंग पे लुकोई ले भैया बोले फ्लीरिंग पे पैसा लुकोई बोले जा ले ले मां हम में अपना मार नहीं खनन त्विन तक दर्जन अमेरिकन से डॉलर भाई जो इरमिया प्लाफोन पे लुकवाए रहा बोले दारनास मार्क्टन से 4,000 सूरीनाम से डॉलर जो रुकर जेबी में रहा ओ ले ले से मोबाइल टेलीफोन लेके और सब रूफर्स पेल भागल भैया होते इनके सिपाही अब का करे है गैल है 4 गो के खोजे कब में आशा पाएगा कब में आशा पाई भैया तू जाने हैं जो चला गया बस उसे तुम भूल जा ऐसे बतिया है तो अंदर नहीं मर लोन भैया इतना पैसा काहे धरे है कि अंदर बैंक पे उस सबके सही कर है जैसे ना है भाई कि हम में डॉलरवा काम लगी तो हम जाए के डॉलरवा फिर ले सकेला हमारी भौजी

पे भी आप लोग को हम बताएंगे और आगे कैसे है ए बांसुरी नाम के का करे भैया उसप हुआ के रखेने मांगे हैं कि जितना आदमी नीदरलैंडर सहीगा जोन पैसा हुआ धरी से उस सब आदमी के प्रॉब्लम में डाले भैया। अभी इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि क्या क्या होता है सूरीनाम देश में। तो जोन जोन आदमी सूरीनाम में पैसा धरे है उस सब के एगो बड़का प्रॉब्लम है भाई। अभी आप लोग को हम इसका न्यूज के बारे में बताएंगे कि रखे रही वहां पर कौन कौन कौन कौन वहां पर काम को करना चाहते हैं कि नीदरलैंड के जेके हुआ बैंक है दस मूल खान माकम मिथुन मिथुन खेल्ट में से और सबके रिकनिंग चाहेगा का बोले कि ऑफहेव करके नीदरलैंड में सूरीनाम से बैंक रिकनिंग क्रेखन उ है अने फनाफ 2007 में स्ट्रेंगरे रीखल भाई। तो अगर आपको सूरीनाम देश में पैसा वहां बैंक पे है तो है बोली अनमेखा खरोत प्रॉब्लम आज दे आवत की लेस में से बोले नीदरलैंड और यूरोपिया के आदमी के जितना बैंक रिकनिंग सरनाम में बा 11 तारीख जनवरी से हैबस त माकंत क्रय के में न्यू एयू बैंक रिकल्स नवा यूरोपीय से रिकल्स अब के आयल है बोले दैट बतीक नीड दैट योर रिकनिंग ऑटोमेटिक वर्ड कसलोटन ऑफ दैट इट फॉरबोडन वर्ड ऑफ गेल्ड बाय सूरीनाम से बैंक टू हैवन द फ्रांडरिंग राग फॉर ऑल द मनीर waarop banken buiten de Europese Unie hun diensten aan klanten in Nederland mogen aanbieden. Ki dusar kam usap kari tolon jano dheer admi bhaiya hiya balasting na mange bhare. Ta jai ke hua bank khol ke pa paiso hua koro rakam dhare ba tab Europa muilak kare hai. Ta bole Suriname se banken fallen under the regels for landen buiten Europa. Suriname geld binnen deze regelgeving als een zogenaamd derde land. 2027 met januari ze bolega volgens op oor jabbers aanskerp kari banken uit zeker landen aan diensten in Nederland mogen aanbieden bolle de Nederlandse regels vloeien vooruit de Europese richtlijnen. De diensten zoals betaal- en spaarrekening, leningen en andere producten kan een buitenlandse bank in bepaalde gevallen een vergunning en bijkantoor in Nederland nodig hebben. De verplichtingen liggen daarom in de eerste plaats bij de bank en niet bij de Nederlandse klant. Een Surinaamse rekening houden, aanhouden, wordt dus niet eens strafbaar. तो ये बात है बड़ी बड़ी बात है दिस पे अलमाल आदमी लोन अपन पैसा जाए जाए आदमी के ताशिशाल दीस में काम उम ना करे भैया और जाए जाए सूरीनाम के बैंक में धल ले रहे हैं और यहाँ के रखे नहीं ना जान पावे तू कितना पैसा बैंक में धल ले है और आदमी खा शिशाल साक के पैसा और कितना आदमी हुआ पे ढेर ढेर पैसा धरी से और बला सिंह यहाँ ना भरे एंड वेल देश नीदरलैंड यूरोपी से इस सब चीज के बारे में अब जाए जान जाए भैया तत्ते वी का से मार तेवे का समझना है भैया स्वागरी तेवे का जाने तो तरख वैरखन द क्रक से मारेगा तू जाने नीदरलैंड कौन ची भैया उजे तोर उंगरी पकड़ेगा तो तुके जितना नहीं मके रोवा सब गिन ढाड़ेगा निकिया ढाड़ी इसी नाम है ना भाई जे तुके हमारी रिकनिंग है और सब जान जाए तो के रिकनिंग है और तू दौड़ ना दे ले हैप्पी एंड मी का करू तो प्रॉब्लम वी ना दे दा तुम अ न्यू रिकनिंग ओपन कान इन अंदर पोसिशन तरह कोमन अ बलंगरे uitstring waarin een klant volledig uit eigen beweging naar Surinaamse bank benadert binnen. Bolle woonplaats belangrijker is dan Nederlandse paspoort. Ha. Ook de woonplaats maakt veel verschil. Ego Nederlander die daadwerkelijk Paramaribo met jou rehe hee bankier valt niet alleen vanwege zijn Nederlandse paspoort onder dezelfde regels als iemand die in Amsterdam woont. Metlap ki tu hua rehe baat het ook een Nederlandse paspoort baan. Tu hier na eens geschreven baat het hua rehe hee dan is het niks aan de hand mensen. Maar je tu hua na rehe of tu rehe Amsterdam met paisa hua dhalle baat dan heb je een probleem. De Europese regels richting
richten zich op dienstverlenging aan klanten die zich binnen de Europese Unie bevinden of daar gevestigd zijn. Dus toen je Europa maar te tabtoor gaat geldig, maar toch een Nederlandse paspoort uit de Suriname mee. Dat is niks aan de hand. Voor de Surinaamse banken kan dat betekenen dat ze Nederlandse woonadressen scherper gaan controleren, extra vragen stellen aan nieuwe klanten of besluiten bepaalde producten niet langer actief in Nederland aan te bieden. Worden daarom Kjaratarik januari 2027 mee geen automatische sluitingsdatum is. De uiterlijke gevolgen hangen af van wanneer de rekening is geopend, waar de klant werkelijk woont en hoe de bank de klantrelatie na invoering van de nieuwe regels organiseert. Toen hebben we hier nieuws te zijn mee. Toen ik het vertelde, ik ben bang dat ik hier op een paar dagen ben. Dat ik hier aan het kijken ben. Dat ik hier aan het kijken ben.

थोड़ा गोरा लगता है तो कभी काला लगता है तो कभी उज्जल लगता है, लेकिन लगता तो है, वो बात है हमारी जनता।

हमारे दोस्तों अपना प्रोग्राम को हम बढ़ाते हैं। सूरीनाम के लोग और सूरीनाम के लोग और नीदरलैंड के लोग के भी हम ये बात बताना चाहते हैं कि खाई कोई बनाइयो भैया चूल्हा पे या खास पे या जोंची पे अपना खाना तैयार करते हैं तो वहाँ पर बैठ कर देखना कि खाना कैसे होता है, ना कि हड़िया में तेल डाल के और सूत जाइए भाई। उस सूते वाला समय ना है, सूते वाला समय रात के रहे है नहीं दिन के। अपने एगो देचा मान लियो लेकिन ना खाई बनाइयो तब जइयो। का बोले है खाई बनावट में सूझ जइयो। अभी ये बात हो रहा है हमारा सूरीनाम के देश के ओर हम जाए भैया। तो एक घर है फ्रांबोस वेख में, शनिचर अतवार के दरियन दिन ऑगस्टस के मानचित हो रहा है। तो वहाँ पर मौसी तेल डार के हड़िया में अपगोरे तेलवा गरमाई, इतरे में गतेल अबे ना गरमान है और मौसी सूत गे भैया। मौसी सूत गे, मौसा के पता ना कहाँ है। अब जब मौसी जगल है भाई तो तेल जो रहा हड़िया समेत खास फॉर नाइस पर से नीचे गिर गए है। जब गिरल है तब मौसी के आंखी खुलल है। पहले जब गिरल है तब मौसी के आंखी खुलल कि अरे कौन ची गिरल है। तब मौसी कांडे के कुकरू में पकड़ ली से जबरदस्त आग भाई। हाँ आग लग गए है। तो बरांतवेर के आवत आवत का और आगे सब भस्म कर दे इसे घर के भाई। जितना इन बुदल ला सब दोन फोर्खस बरांतवेर बोले है, बोले इतना फर हेतन फन ओली तुन है तेज इस द वक्तन इन स्लाप फील ऑफ गेगेवन मोमेंट फत हेड खार फॉर माय फ्लम वन हेड फ्यू सिक्स नल अर ब्राइडन ओवर सुंग द रेस्ट फ्रॉम द वूनिंग। अब पकड़ ले भैया वो आगे लग गए हैं। और बताई गई है घर वहां में एक ईटा के घर रहा 3 मीटर बे 8 मीटर बड़का घर रहा। तब वो मैं से जे माँ इलेक्ट्रिसिटी नेट फन ABS की भी उम्र रहा, बाकी घर वहाँ ब्रांड फर्सी कर ना रहा भाई। सोचो बड़ा महंगा ओंहा उनका बोले सपना रहा है भैया तू सूद गए तो घर फर्सी करना है और तू ना ख्याल कह

इसमें लाश हुई है 15 तारीख अगस्तक से और ओके सबन बहुत खोजे जेकर ऊपर सबन धरी से बोले हैगा 10,000 पैसा हम लोग तो के देबे एरो बोले कोई बता दे कि रोदनी कहाँ है तो सोंदाग 23 अगस्त स्टार्ट द टेलर ऑफ 9,865 एरो बाय इन gebracht door 163 donatie और बोले है uiteindelijk schreef we eraf van inzamelingsactie van 30.000 man. Dat is wat je kan je betalen we. Jeremia kan bole 30.000 euro hamlun toke debe. Of bole ook er koi betalen na familie opgezegd via een GoFundMe. Bole hamme khojo. Bole hega met het geld wil de familie extra mogelijkheid creëren om Rodney te vinden en meer duidelijkheid te krijgen over wat er met hem is gebeurd mensen. और उसके सब खोजे हैं फिल्म आकर हैगा और बताए गए हैगा इन सामल बद्राख होकर दर तक दैजन हुई है रोटनी के बोले के फॉर इंफॉर्मेशन दे टू लेट कि रोटनी अभी जिंदा है लौट याल विल द फैमिली में द लोना से प्रोफेशनल यूरिडिस बेस्टन एन एडवोकेट एंड कॉस्ट इन सुरीनाम इन दी नो साकले इन नीदरलैंड बतालन ook andere uitgaven die rechtstreeks verband houden met het vinden van Rodney kunnen uit de opbrengst worden bekostig, bole koi bata dewe kahan hai, te bole hamlo sab kosten to ke hamlo bharab aur familie maak duidelijk niet te willen afwachten en naar eigen zeggen geen enkele mogelijkheid onbenut te willen laten a palwaar soche ki kahan ba aur verblijf van Rodney और बतावे हैगा पलवार बोले हैगा ग्राउंड फंडिंग्स पखिना अपडेट्स गेवन ओवर द सुक्तोग एंड बस्टीनिंग फॉर द इंसामलिक गेल्ड मा एकर बारे में अब कुछ पता ना है भैया यहां बताए गए हैगा कि इतना पैसा धरी से लेकिन भाई एकर गाड़ी मिलल है नानी एकर ओतो मिलल एगो स्वांपू में एगो स्वांपू में एकर ओतो मिलल है सरमक्का में भाई सरमक्का मिलल है एकर ओतो एकदम जराई के सब भस्म कर दे रहा ये रोटनी लाइसनर जो ने 25 तक यार रखेगा और बोले दर बफेस्कन ब्रोन रोंडोम है अंदरसुक अंदर गोरस पुलिसी फुरते के सब चेक करी से तब बोले हैगा अनवेशिक फन ओतो बोले किया सोरेंटो है और यह कहते हैं कि नंबर भी लिख ले कि ओही को तो हुआ जरल है और शाशी नंबर में सब क्लॉप हुए है कि रोटनिक ओतो है बोले सनिचर के 15 तारीख अगस्तस के सेन वार्निंग 15 तारीख अगस्तस गेल है तब से एकर एक को स्पोर ना है कहां है और कहां ना है सुरीनाम देश के बाद बतियाला भैया तो एकर बारे में सिपाही चार को फरदाख्त के पकड़ी से सन्ना में और बोले बन करी सेगा और बोले तरवेल अफीर द फरदाख्त अबे भगल है बोले onder de aangehouden verdachten bevindt zich een Cubaans echtpaar. Cuba ke char milama se dui parani he Cuba ke bole de vierde verdachte is Ryan T bole ex-partner hega jon huidige CEO van Rudisake hega aur bole hega de politie heeft de verschillende huidige CEO van Ruzida तो ये क्या भैया रुसिदा कौनची हम जाने लगो बदराई फसरी नाम में रुसिदा लेकिन मालूम ना है ये कौनची है रुसिदा और सुरीनाम देश के बातचीत हो रहा है बताए गए है और रुसिदा के बारे में ना लिखल है कि कौन बदराइफ के ऊपर द लेडिंग फॉर रुदीसा वो दूसर है भैया और ये दूसर चीज है तो जैसे रहेगा आप लोग को जब एक चीज के हम में 100% ना है तो हम ना बोले सीओ फन दिशा लिखल है बोले पॉलिसी फर्स्ट कैलेंडर एड्रेस पे गई है और तरह शेयर करे है ये सब के बोले फॉर अस लोग बोले एगो भगल है और बोले अब लाइसनर के पता ना है ओके एगो स्पोर्ट ना हो कहां है भाई बोले हैगा द पॉलिसी हाउट रीकनिंग में द मिस ड्राइव en roep personen met informatie over zijn vermissing of zich te vermelden. Obolega Leisner is in Nederland bekend als filmproducent en is in Suriname werkzaam als directielid van Rudisa NV. De directielid heet
रुदिशा एनवी के भैया हाँ अब समझ ली एगो बद्राइफ है सुरिनाम के फिल्म प्रोड्यूसर मंगे सुरिनाम में काम करे है रुदिशा एनवी के बारे

और प्यारी खिड़की देखो ना दोस्तों, एक दो समाचार और हम आप लोग को सुनाएंगे, उसके बाद में हमारा समय आ चुका है बंद करने में। तो हम चलते हैं दोस्तों सूरीनाम में। भैया इसे कोई गैल है, भैया एक गाड़ी गैल है शिकार खेले गैल है बेनलांत में, एगो इशुसु डी मैक्स के लेके और इस सब अबे ऑटो में से ना उतरल और थक गए जा तो तू में सुतले रहा भाई, सब ऑटो में सुतले रहा और उतरे में भैया बंदूक दगल है ना इस सब कोई के दूसर कोई इस सब के दागी से बातचीत हो रहा है बीता ग्रोन में भैया बीता ग्रोन में भाई। और एक मिला तो हुआ में बैठल ओके जाई के ओकर चेहरा पे लाई लगल है और ओकर पजड़ी में भैया रेब में लगल है। तो इस सब ओ तो और एगो जंगल में घुसल ला शिकारी यही सब के, लेकिन जो घुसल ला ओके इस सब छोड़ के गए ले और दिर्रक गए ला अनखिफ्त करके सिकन हैस में के लेके वन एकर देही में से खून निकलता भैया तेर हुक तो फन से मोन एर अन रक्त लक सही द फन द रेबन कास और बोले फॉर नो वन वाटर दैट jarig M K met de ICC DMX bij de politie Sandra arriveerde over de verklaring die ook een vriend MG en twee vrienden was gaan jagen. Het gezelschap arriveerde rond 22 uur ter hoogte van de brug van Bita Groen. Op het eigen het dusser gwaadi bolle pas bhail he. Te is heb keo toe op het dagi se bhaiya hiya wat eigen he. Bolle toen zij wakker werd zag zij dat haar vriend in de auto gewond was gera. Het bleek schotwonden in te hebben opgelopen. Bolle de vrouw kon niet aangeven hoe de schotwonden precies worden ontstaan en evenmin door wie haar vriend was beschoten. Ik hoorde wie ze plegen. Volgens haar zou de slachtoffer zelf met duidelijkheid te willen hingen. Een slachtoffer werd bij een academisch leger. Ze van oké. Op het aanwege voertuig terug in de richting van de politie voor Sandrij. De man die eerder het bos was ingegaan om te jagen werd daarbij in de bos achtergelaten. To bataye gaye bhaiya ki ko dusar gaadi paas utra tha bole us sab dagi se. To hamari janta aap log ko hum yahi samachar aapko dete hai aur yahan tak tha hamara desh aur videsh ka samachar jo aap log ke liye humne suna diye hai.

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी रोमांटिक जोंग रोमांटिक जोंग के मूड में है। मूवी के नाम है झनकान फन नहीं खतख और बलमा नहीं खत नहीं खतख का आशा भोसले का जोंग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो दिल लगी ना किया करो।

0: किया करो एवरी गिन एवरी ग्रीन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत की ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा।

फूल को भी तुझको रफीजी की मोहम्मद रफीजी का ये सॉन्ग है। इस मूवी में हीरो था अजीत भाई जो विलन के रोल अब लोग अब वो करते हैं। तो निकट इंद्रियों से स्टका ये सॉन्ग था। तो अगला गीत की ओर हम चल, ये गीत जो है नहीं किया तो करके देख, मेरे ख्याल से इस गीत को हम पहली बार सुन रहा हूं, नहीं किया तो करके देख। और ये है नाइटिंगेल, नहीं नहीं मुकेश का ये सॉन्ग है, करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ द मिलियन, माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है और मूवी का नाम है चार दिल चार रहे। और नेखतीन हंड्रेड का नेखतीन फाइव तक का ये सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

तो करके देख, ये तीतल तो बहुत मस्त है भैया। और ये है हाथ जाओ दीवाने आए, मूवी का नाम है सिंगापुर। ऑल इज गोल्ड फॉर

और हट जाओ और दीवाने आए और कौन सा दीवाना आएगी हम आप लोग के लिए हम छोड़ देते हैं और सुना जाए मैती मुकेश का ये सॉन्ग है।

नजर बचा करी चली गई वो, और क्या क्या गाया है, मशहूर सॉन्ग था हमारी दोस्तों मुकेश भाई थी। मुकेश करोड़ों का दिल चुराने वाला, हार्ट ऑफ मिलियंस, और वह है माई थी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में, हसरत जयपुरी, शैलेंद्र।

लगी जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर। ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

जीते हों किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। आवाज़ के लिए इस दुनिया में जख्मों और दिलों को सीता है। सुनने वालों के सेवा में साथ सप्रेम नमस्ते याद आप हो। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है www.faun.fm.in पर, वीफी रेडियो और दफर रेडियो पर। घड़ी पर देखा जाए तो करीबन 12 का वक्त है, 12 क्लॉक्स लग 12 और आप चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर। ये खास कार्यक्रम ब्रॉडकास्ट हो रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा दनहाक शहर से। जो बीमार है लाचार है, तंदुरुस्ती दुआ के प्रार्थना है। जिनके घर में कोई शादी है, कोई विवाह हो, फाउन हिंदुस्तानी रेडियो की तरफ से मुबारकबाद और बधाइयाँ पेश है। मुझसे पहले भैया जॉनी नंबर वन अपना कार्यक्रम पेश किए। भैया जॉनी नंबर वन, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आगाह करने के लिए। अब यहाँ से मैं हूँ आपका सेवक गंगा और रहूँगा करीबन 3 बजे शाम तक।

मौसम तो बहुत प्यारा है जी हाँ, मौसम बहुत प्यारा है और करीबन यहाँ तक दिख रहा है त्विन तक से इन त्विन दिख रहा है, बहुत प्यारा मौसम है और आप तत्पर है, आप जहाँ भी होंगे जो भी कर रहे होंगे और जिस देश में भी होंगे, विदेश देश विदेश में, पता नहीं सुबह होगी शाम होगा रात होगी, बहरहाल आप सबका हृदय से स्वागत है जबकि आप फाउन हिंदुस्तानी रेडियो सुन रहे हो। शाम के कार्यक्रम में आप भी हैं मैं भी हूँ तो लीजिए के कार्यक्रम में मैं आपको ये गीत सुना रहा हूँ, आपको आगाह कर देता हूँ जी हाँ बता देता हूँ, अपने हिति प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से बता देना जो हो सकता है इस वक्त कार्यक्रम नहीं सुन रहे होंगे तो बता देना, करीबन 2 बजे मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस का एक कार्यक्रम पेश करेंगे, आज उनका निधन का दिन है, आज से 50 साल पहले निगेटिव सेशन सेफ तक में उनका स्वर्गवास हो गया था डिट्रॉयट अमेरिका में, तो उनके याद में हम एक कार्यक्रम पेश करेंगे करीबन 1 घंटे का, करीबन 2 बजे के बाद, 1 से 2 तक जी हाँ 1 से 2 तक दर्ती न्यूर फिर तीन न्यूर, और हो सकता है हिति प्रेमी जान पहचान शायद उन्हें नहीं पता है तो बता देते हैं, आज 50वां स्वर्गवास का दिन है, उन्हें याद करते हुए आज शाम 1 और 2 के दरमियान फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा हम एक कार्यक्रम पेश करेंगे।

तो लीजिए पहला सिलेक्शन मैं पेश कर रहा हूँ इस तरह से आ रहा है आपको सुनाने के लिए, सोनू निगम जी और अलका याग्निक जी।

हाँ जी, अलका याग्निक और देखते हैं सोनू निगम जी, ये दोनों मिलके आपको सुनाए ये शानदार गीत फिल्म जीत में से निकाल कर हमने चलाए हैं। चलिए, शाम का कार्यक्रम है, आप भी हैं और कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, जहाँ भी होंगे तो लिख लीजिए, हम आपको ये सुनाते हैं इस तरह से।

अगर तेरी जलवा नुमाई न होती। रफ़ी साहब और सुमन कल्याणपुर आपको सुनाए फिल्म बेटी में से निकाले हैं 1964 का यह गीत शंकर जय किशन के साथ पर आपको हम सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है कुमार सानू और साधना सरगम। ये दोनों अपनी इच्छाओं के बात करते हैं, यानी अपने हसरतों के बात करते हैं। आप सोचोगे हसरत क्या है, इच्छा क्या है, बस एक ही बात है भाई, हसरत है उर्दू और इच्छा है हिंदी, बस वही है। अपनी हसरतों के बारे में, अपनी इच्छाओं के बारे में ये लोग बात करते हैं। चलो हम भी सुनेंगे क्या बातें करते हैं।

हाँ जी, कुमार सानू और साधना जी दोनों मिलके आपको ये शानदार लवली का गीत सुनाएं। अपनी हजरतों के बारे में, इच्छाओं के बारे में इन्होंने जाहिर की, उम्मीद है आप सुने होंगे अवश्य। आप चुन है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पर, जो लोग चुन की मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है। चलिए आपका स्वागत करते हुए हम आपको ये सुना रहे हैं इस तरह से।

बेखुदी में समन सनम उठ गई है जो कदम, रफ़ी साहब और लता जी मिलके आपको सुनाए हैं। फिल्म हसीना मान जाएगी में से निकाले निकली आखिर से अस्त को 1968 का ये गीत कल्याण जी आनंद जी के साज पर हमने पेश की। चलिए शाम का कार्यक्रम है, बृहस्पतिवार 27 अगस्त का कार्यक्रम है। जैसे मैंने कहा अभी 1 बजे के बाद 1 और 2 के दरमियान मुकेश जी के कार्यक्रम हम पेश करेंगे। आज उनका 50 साल हुआ, उनका देहांत हो गया, स्वर्गवास हो गया अमेरिका डेट्रॉइट में, जिसे आप फ्रांस में दित्रुआ भी कहते हैं। तो उनके याद में, उनके याद ताज़ा करने के लिए 1 और 2 के दरमियान में कार्यक्रम पेश करेंगे। अपने हिंदी प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी को बता देना, शायद वे लोग इस समय नहीं सुन रहे हैं, तो अगर हो सके तो सुने। हाँ, ये भी है, अगर मुकेश के बारे में आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हो, तो उसी समय आप तार कर सकते हैं। तार का नंबर तो मालूम है, लेकिन एक बार फिर दे देते हैं, 9 से 5 तक या तो 9 से 5 तक। मैं भी सब कुछ नहीं जानता हूँ, अगर आपके कोई अरफार हैं, कोई एक्सपीरियंस है, मुकेश से मिले होंगे, कुछ बातचीत हुआ होगा 1-2 मिनट का, तो आप तार करके बता सकते हैं फाउन हिंदुस्तानी रादे द्वारा। लोगों को ठीक अच्छा लगेगा, सुनने वाले श्रोताओं को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि मुकेश के बारे में शायद जो हम कुछ नहीं जानते थे आपसे सुन सकते थे या उन सुन सकते हैं। अगला गीत हम पेश करने वाले हैं वो ये है, इस तरह से लोफर्स अपने बारे में क्या कह रहे हैं।

एक मुन्ना मेरी उम्र दा यानी मेरी उम्र का आपको सुनाया गया शाम के कार्यक्रम में लता जी की आवाज में। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, पहुंचते हैं जी हाँ इस तरह से मैथ मुकेश द हार्ट ऑफ अफिलियंस। तो आपको याद रहे मालूम रहे आज 50 साल हुए मुकेश जी के स्वर्गवास हुए, तो एक और दो के दरमियान एक कार्यक्रम हम पेश करेंगे, उम्मीद है आप अवश्य सुनेंगे। चौधरी के साज पर फिल्म छाई

राजेंद्र कृष्ण के लिखी हुई गीत सलील चौधरी के साज और लता जी और मैथिली मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए हैं ये शानदार गीत, ये प्रेम कहानों कहानी ऊपर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए अगला गीत हम आपको सुनाते हैं, जी हाँ, अब वो है उदित नारायण। उदित नारायण आपको क्या सुना रहा है, आपने फिल्म अवश्य देखे होंगे राजा हिंदुस्तानी, तो लीजिए राजा हिंदुस्तानी से निकाल रहे हैं ये गीत।

तू बहार बन के फिल्म राजा हिंदुस्तानी में से निकाले हैं उदित नारायण की आवाज़ में आपको सुनाया गया फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ये गीत। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं, देखते हैं सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी ने तार किए। मीला जी आप कार्यक्रम सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। तो लीजिए मीला जी आपके लिए ये गीत हम चला रहे हैं सूत्रमेर के रहने वाली मीला जी के लिए।

संभल जाओ पपीहे के आए दिन बहार के, लता जी के आवाज़ में देखते हैं फिल्म आए दिन बहार का ये टाइटल सॉन्ग हम आपको सुनाए हैं लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर। निगेतिन ससन सस्तक 1966 का ये मधुर गीत लता जी के आवाज़ में हमने पेश की। आपको मालूम हो कि कितने कैलेंडर पर लिखा है सेवनतुंतक रक्षाबंधन और कहीं कहीं भी अख्तंतुंतक, लेकिन सही मायनों में आज है रक्षाबंधन सेवन दिन को क्रिस्तस, इसलिए कल चंद्र ग्रहण है, क्योंकि चंद्र ग्रहण है यानी मान फॉर दोस्त्रिंग, इसीलिए आज रक्षाबंधन है। तो रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर सभी भाइयों को सभी बहनों को फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा मुबारकबाद दुआएं खैर और बधाई पेश किया जा रहा है। चलिए विज्ञापन से पहले हम आपको ये गीत सुनाते हैं, उसके बाद पेश करके विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद मुकेश जी के कार्यक्रम। लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए जो गीत हमने चलाए हैं, सुनो सजना लता जी की आवाज़ में, ये था सूत्रमेर के रहने वाली मेला जी के लिए और जनाब मंसूर के लिए, मेला जी के मन जनाब मंसूर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना के साथ हमने पेश किए।

0: मैंने क्यों प्यार किया ये दिल इकरार किया। और फाम हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में ये गीत हम आपको सुनाए हैं और उदित नारायण अलका जी की आवाज़ में फिल्म हेलो ब्रदर में से निकाल कर आप चुने फाम हिंदुस्तानी रेडियो पर। और आज दोंदरदाख 27 तारीख अगस्त है, जैसे आपको पता है कैलेंडर में कितने मिले कहीं लिखा था आखिर द्विंदक सीवन द्विंदक, लेकिन रक्षाबंधन आधे क्योंकि कल चंद्र ग्रहण है यानी मानपुर दोसरंग है, इसीलिए रक्षाबंधन आज ही है। इंटरनेट में भी जहाँ तक मेरा ख्याल है लिखा हुआ था आखिर द्विंदक, लेकिन उन लोगों को तब नहीं पता था कि चंद्र ग्रहण होने वाला है यानी मानपुर दोसरंग। चलिए यहाँ से पेश करते हैं विज्ञापन, विज्ञापन के बाद न्यूज़ और न्यूज़ के बाद मैं फिर वापस आ रहा हूँ मुकेश जी के कार्यक्रम को लेकर। इस तरह से आप सुनेंगे
1: Adverteer nu bij Vahon Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.

फिल्म जिस देश में गंगा बहती है में से ये गीत निकाले, आ अब लौट चले। फॉर्म हिंदुस्तानी रेडियो पर आप चून हैं आज दोंदर तकसीब ने तुंत खो खुस्तस को 2026 में। लेकिन आज से 50 साल पहले ये गायक, ये स्वर्ण आवाज़ के गायक, एक गायक जो हमारे बीच आज नहीं है, एक गायक जो करोड़ों का दिल चुरा कर हम लोगों से बिछड़ गया, अचानक अपने तमन्नाओं को, अपने फैंस को, अपने जितने छोड़ दिए हैं सभी को छोड़ कर चला गया और उसका देहांत हुआ। सैफ नंद तख में जब वो महज 53 साल का था, अब्दुल्लेफ्तन अमेरिका में डिट्रॉयट में, उनकी पैदाइश हुआ 22 जुलाई निगतिन द्रियन त्वेंदक में, त्वेंदक यूली निगतिन द्रियन त्वेंदक, दिल्ली के निवासी था और आज 50 साल हुए वो हमारे बीच नहीं है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि पेश किया जा रहा है और जितनी कार्यकर्ताओं हैं सबकी तरफ से, और जहाँ तक मेरा ख्याल है उनके सभी फैन, कितनी तो अब नहीं है क्योंकि 50 साल हो गया, जो जमा थे शायद आज नहीं, जो मिडिल बार रिलीफ थे को तो बिल्कुल नहीं होंगे। बहरहाल उनके सभी फैंस के तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि पेश किया जा रहा है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा।

इनके बारे में शायद मुझसे ज़्यादा आप भी जानते होंगे, क्योंकि आप शायद इनसे मिले होंगे, हमने तो नहीं मिले हैं, सिर्फ उनका शो देखे हैं थिएटर स्टार में। मेरे लिए थोड़ा उन दिनों मुश्किल था क्योंकि रात्रि को कोई फुरफुर नहीं था, लेकिन उनका शो हम बाद में देखे सिनेमा यशोधरा शर्मा का श्राद्ध में। आप भी शायद स्टार में देखे हुए होंगे या यशोधरा में, आपका हृदय से स्वागत है। आप सुन रहे होंगे और अभी देर नहीं है, अपने ही थी प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से कह सकते हैं कि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा एक कार्यक्रम पेश हो रहा है मुकेश की याद में।

0: मुकेश जी का एंट्री हुआ बॉम्बे में, लेकिन उन्हें लाया किसने? मोतीलाल। मोतीलाल प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एक्टर था उन दिनों का, और उन्होंने राज कपूर को सुना एक जश्न में, अपनी बहन के लिए वो गीत गा रहा था, तो मोतीलाल को बहुत अच्छा लगा, तो मोतीलाल उनसे मिला और मिलने के बाद वो बॉम्बे आया। दरअसल में मुकेश जी एक्टर बनना चाहता था, सुंदर नाच था, नौजवान था और चेहरा अच्छा था, है वास इंद्रदातन हुई अख्तर शेख था थे, लेकिन उनके एक्टिंग बहुत दिन चला नहीं, इसलिए वो बाद में गायक बन गया।
1: देश तेरा।
0: लेकिन उन्होंने पहली फिल्म पहली नज़र में एक गीत गाए हैं, पहली नज़र का गीत तो आप लोग बहुत बार सुन चुके हैं, तो वो गीत फ्लॉप भी हो गया, फिल्म भी फ्लॉप हो गया, उसमें खेला था वही मोतीलाल, फिल्म फ्लॉप हो गया, गीत भी फ्लॉप हो गया, लेकिन उसके बाद तहलका मचा दिया इनकी आवाज़ तहलका मचा दिया। तो सुनते ये गीत हम आपको सुनाते हैं।

दुनिया से जाने वाले फिल्म पुष्पांजलि में से निकाल कर ये गीत हम आपको सुनाए हैं मुकेश जी के याद में। मुकेश जी के याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए हम पेश कर रहे हैं ये गीत। ये वही गीत है जिससे वो बहुत पॉपुलर हुआ नेगेटिव फाइव फेयर तक में 1945 में अनिल विश्वास के साज पर। अनिल विश्वास ने कहा तुम गा तो सकते हो ठीक है, इनसे अपॉइंटमेंट बन गया लेकिन मुझके समय पर नहीं पहुंच पाया रिकॉर्डिंग हाउस। तो पूछने के बाद पता चला कि मुकेश के बहुत चिंता था कि कैसे गाएगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि पहला गीत तो फ्लॉप हो चुका था फिल्म पहली नज़र में। और अनिल विश्वास ने कहा हम तुम्हें अवश्य गायक बना देंगे। तो पता चला कि मुकेश जी अपने कुछ दोस्तों के साथ बैठ कर शराब पी रहा था बार में। तो अनिल विश्वास वहाँ पहुँच गया, उन्हें नशे में देखकर सोचा कि नहीं अब करूँ तो क्या करूँ। मुकेश जी से कहा चलो रिकॉर्डिंग सब तैयार है, म्यूजिशंस तैयार है, आपको रिकॉर्डिंग करना है। लेकिन मुकेश चाहता नहीं था जाने को, अनिल विश्वास उससे बहुत बड़ा था उम्र में। अनिल विश्वास ने एक चांटा दिया मुकेश के गाल पर, जी हाँ कान के नीचे दिया एक चांटा, और कहा तुम अभी इसी वक्त रिकॉर्डिंग करोगे। आपको शायद पता नहीं होगा या होगा, विश्वास नहीं करोगे, मुकेश जी स्टूडियो में खड़ा हुआ नशे में था और एक ही टेक में, जी हाँ एक ही टेक में उन्होंने ये गीत गाया जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ। एक ही दोबारा टेक नहीं करना पड़ा, एक ही टेक में एक ही बार रिकॉर्ड हो गया। ये गीत इस तरह से गाया गया मुकेश जी के जरिए जब वो पूरा नशे में था।

फिल्म बावरे 9 में से निकाले हैं ये शानदार गीत और हम आपको सुनाए हैं। ये शानदार गीत पेश हुआ मैत मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस का। चलिए अगला गीत हम चलाने वाले हैं मैत मुकेश जी का और वो है ये गीत, शायद आपको भी याद होगा सूरीनाम में उन दिनों जब बहुत लोग सूरीनाम से हॉलैंड आ रहे थे तो ये गीत उन दिनों बहुत चलाया गया, जी हाँ बहुत पॉपुलर था। चलिए ये अमर गायक के याद ताज़ा करते हुए चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं।

हो जाने वाले, हो सके तो लौट के आना। फिल्म बंदनी में से निकाले हैं, और ये मुकेश जी के याद में, जबकि आज उनका 50वां वर्ष ही है, कही है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, ने 53 साल की उम्र में वो इस दुनिया को छोड़कर चला गया। आज अगर वो जीवित होता तो होनद्री यार के रहता, 103 साल का होता। सी फिल्म हो खुश के उनका स्वर्गवास हुआ डिट्रॉइट अमेरिका में। आप बहुत से ब्रोकन हार्ट सॉन्ग मुकेश जी के सुने होंगे, और आपको याद है कि जहाँ मुकेश जी के आवाज़ दर्द की दरिया था, यानी दर्दों में डूबा हुआ था, तो खुशियों का समंदर भी था। जी हाँ, खुशियों का समंदर भी था, और हम ये गीत सुनाते हैं।

फिल्म अराउंड द वर्ल्ड में से निकाले हैं, शंकर जयकिशन के साथ पर हमने आपको सुनाए हैं। और अराउंड द वर्ल्ड का ये गीत, जैसे मैंने कहा, जोश के गाना भी हैं, हंसी के गाना भी हैं, सब तरह के गाने इन्होंने भी गाए हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकन हार्ट गाए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ब्रोकन हार्ट भी इन्होंने गाए हैं। और चलिए हम आपको ये गीत सुनाते हैं इस तरह से, मैथ्यू मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस। जी हाँ,

दूर रहकर भी दोस्ती निभाऊंगा, ये तो सच है। आप वो दोस्ती निभाए या निभाए, लेकिन हम जो हमारे फैंस हैं, हम लोग दोस्ती अवश्य निभाते हैं। कैसे? उनके गाने गाते हैं, उनके गाने कराओकम गाते हैं, सीटी बजाते हैं, दब करते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। तो दोस्ती तो है, जी हाँ, दोस्ती तो अवश्य है। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में आपका स्वागत है, जबकि मैं तो मुकेश, द हार्ट ऑफ मिलियंस, करोड़ों का दिल चुराने वाला मुकेश चंद माथुर का आज 50वां वर्षी है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो उन्हें याद कर रहा है। जी हाँ, चलिए उन्हें याद करते हुए

ये भी शंकर जय किशन के साज पर अराउंड द वर्ल्ड में से निकाल कर हमने आपको सुनाए। वैसे तो मुकेश जी अपनी ज़िंदगी में बहुत से अवार्ड हासिल किए और बहुत से फिल्म फेयर अवार्ड, लेकिन पद्मश्री कभी नहीं उन्हें मिला। पद्मश्री ना मिलते हुए भी, जी हाँ, पद्मश्री ना मिलते हुए भी दुनिया को हिला कर चला गया इस तरह से।

फिल्म आबरू में से निकाले हैं मैं तुम कैच द हार्ट ऑफ मिलियंस, आपको सुनाए ये शानदार गीत, जबकि आज फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा उनके तमाम फैन को बहुत बहुत श्रद्धांजलि, मुकेश जी को श्रद्धांजलि पेश किया जा रहा है उनके तमाम फैंस की तरफ से, और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ये कार्यक्रम पेश हो रहा है। वैसे तो लोग कहते थे कि मुकेश जी का स्वर्गवास हुआ शो देते समय स्टेज पर, जी नहीं, दरअसल में अफवाहें तो बहुत उड़ती है और उड़े हैं, लेकिन दरअसल में उनकी स्वर्गवास हुआ यूं समझिए एम्बुलेंस में, हुआ ये कि तीन दे इताशे पर वे लोग शेयर करते ठहरते थे, और तीन दे इताशे पर लता जी भी थी और नितिन मुकेश भी, तो मुकेश जी को हार्ट का दौरा पड़ा, दिल का दौरा पड़ा, तो आए लोग और नितिन मुकेश ने लता जी को भी ले आया जल्दी से, और उन्हें लिफ्ट से तीन दे इताशे से नीचे ले जाना था, लेकिन वहाँ का जो ऑफिसर है लिफ्ट में शीर्ष ऑफ अपराध नहीं जाने देता था, मना था, तो तीन दे इताशे से उन्हें बगैर शीर्ष ऑफ मास्कर के लाया गया नीचे एम्बुलेंस में, तो बहुत देर भी हो चुका था, अथवा फील्स द लात खबर दस इताशे से शीर्ष ऑफ मास्कर न लगे हुए, और फिर भी मुकेश को लाना था नीचे, एम्बुलेंस में गया तो उनका स्वर्गवास एम्बुलेंस ही में हो गया, देर हो गया था। तो लोग आज तक भी ये सोचते अगर वो वहाँ का जो ऑफिसर है वो शीर्ष ऑफ मास्कर मुकेश जी को पहनाने देता था, दिया होता तो शायद मुकेश बच जाता, लेकिन अच्छा होने की कौन टाल सकता है, जी हाँ होने की कौन टाल सकता है, अब किसे दोष दे किसे ना दे, शीर्ष ऑफ मास्कर के दोष दें या वो ऑफिसर का दोष दें जो मना किया कि शीर्ष ऑफ मास्कर लिफ्ट में नहीं ले जाया जा सकता है, तो हो गया। बहरहाल ये गीत हम आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम पेश करने वाले हैं और वो है इस तरह से मैं थी मुकेश, एक बार फिर फिल्म दिल ने पुकारा।

वक्त करता जो वफा, फिल्म दिल ने पुकारा में से निकाल कर हम आपको सुनाएं ये शानदार गीत, जबकि आज 50वां वर्ष ही है मुकेश जी का। अगर आज वो जीवित होता तो 29 साल का होता, हाँ 29 साल का होता। उनकी पैदाइश हुई सीफ्रीतक में और स्वर्गवास हुआ सीफ्रीतक में। उनके तमाम फैन को बहुत बहुत धन्यवाद जो सुन रहे हैं और उनके गाने गा भी रहे हैं, उनके गाने मिक्स भी कर रहे हैं, न जाने क्या क्या कर रहे हैं उनके गाने से। और तमाम गायक की तरफ से मुकेश जी को श्रद्धांजलि अर्पित किया जा रहा है। पता नहीं पैदा होकर कहाँ पहुँचा होगा, लेकिन भी कौन जाने हमारे बीच में। बहरहाल चलिए अगला गीत हम आपको सुनाने वाले हैं और वो ये गीत है

मैं तो हर मोड़ पर तुझको दूंगा सदा। फिल्म चेतना में से निकाले निकलती सैफ अंतक का ये गीत। जी हाँ, और हमने पेश किए मुकेश की याद में, आज जबकि 27 तारीख अगस्त है 2026 और उनकी स्वर्गवास हुआ निकलती सैफ अंतक में 1976 आज ही के दिन अमेरिका में। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए उनके तमाम फैन की तरफ से ये गीत, हाँ अभी हाँ चला देंगे, ठीक है। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस फिल्म पूर्णिमा में से निकलती फैफ सस्तक का ये गीत। किसी ने मुझे ऐप की कि हमने द्वैत नहीं चलाए। भाई आपके बात भी सच है, लेकिन दरअसल में अगर ऐसे ऐसे समय होता है स्वर्गवास के दिन हम चलाते हैं तो सिर्फ सोलो चलाते हैं, सिर्फ मुकेश जी के चलाते हैं। हाँ अगर कहूँगा एक शाम मुकेश के नाम या एक रात्रि मुकेश के नाम तो द्वैत हम हमेशा चलाते हैं, लेकिन ऐसे ऐसे घड़ियों में हम सिर्फ सोलो चलाते हैं, यानी सिर्फ मुकेश जी का। Thank you very much.

तुम्हें ज़िंदगी के उजाले मुबारक पूर्णिमा में से निकाले हैं। नेक इतनी फेवन सस्तख का ये गीत हमने पेश किया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। चलिए जल्दी से ये गीत भी आपको सुना देते हैं, तमाम फैन के तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पण करते हुए ये गीत।

धड़कनों के साज पर क्या गा रही है जिंदगी। मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस आपको सुनाए ये शानदार गीत हमने पेश की। चलो एक आखिरी गीत हम आपको सुना रहे हैं मुकेश जी के याद में, और ये आपके लिए जाना पहचाना है।

0: यूं ही तुम मुझसे बात करती है, रवि साहब और लता जी की आवाज़ में हमने पेश की फावनी हिंदुस्तानी रेडियो के शाम के कार्यक्रम में। इस वक्त देखूं तो करीबन 11 मिनट व्यतीत हो चला है 2:00। आप चुने फावनी हिंदुस्तानी रेडियो पर, आप जहां भी होंगे जो भी कर रहे होंगे आपका हृदय से स्वागत है, तो लीजिए स्वागत करते हुए।
1: कहाँ?
2: कहीं भी।
1: अब तुम कहीं नहीं जा सकती।
2: क्यों?
1: पाँव में जंजीर जो पड़ गई है। क्या? चलेंगे तो साथ चलेंगे, रुकेंगे तो साथ रुकेंगे।
2: पड़े आए रुकने वाले,

लता जी की आवाज में चांद रुकने से पहले चली जाऊंगी आपको सुनाया गया ओवर फाउन हिंदुस्तानी रेडियो। आपको चलिए हम आपको सुनाते हैं इस तरह से ये गीत।

0: हमें क्या लेना क्या देना। बहरहाल ये शानदार गीत रफ़ी साहब और लता जी आपको सुनाए हैं। चलिए अगला गीत हम सुनाने वाले हैं, क्या ख्याल है? ये भी एक डायलॉग से है।
1: अपनी तस्वीर को इतना घूर घूर के क्यों देख रही
2: हो? मुझे अच्छी नहीं लगती। बेजान, खामोश, बोल नहीं सकती, किसी से प्यार नहीं कर सकती। मुझे देखो, जिंदगी से भरपूर, जीती जागती, न जाने कितनी जागती आंखों का सपना बन सकती हो। बताओ तुम किसको देखना चाहते हो?

0: बहुत खूबसूरत है तुम, ख्याल की तरह नाजुक, कविता की तरह सुंदर और रागिनी की तरह मधुर। एक ऐसी हकीकत जिसकी हजारों तस्वीरें बनाई जाए।
1: ऐसे न देखो कि मैं नजरें न हटा सकूं। मैं नहीं चाहती कि तुम मुझ में खो जाओ, मुझे खो जाने दो।

फिल्म जाल में से निकाले हैं। जी हाँ, रफ़ी साहब और लता जी की आवाज़ में मिजाज गरामी दुआएं आपकी हम आपको सुनाएं। उर्फ़ान हिंदुस्तानी रेडियो, तो क्या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं? आप भी हैं, मैं भी हूँ, तो लीजिए।

येसुदास की आवाज़ में आपको सुनाएगा यार दिल के टुकड़े। देखते हैं ढाई का वक्त है, हॉल ऑफ द्री हो रहा है, मेरा कार्यक्रम रहेगा 3 बजे तक। 3 बजे से आगे हमारे सहयोगी आपके सेवा में रहेंगे और जी हाँ, कार्यक्रम में शांता जी रहेगी और शांता जी पेश करने वाली हैं रक्षाबंधन के कार्यक्रम। जी हाँ, आपको पता है आज रक्षाबंधन है, क्योंकि पहले पता था कि शुक्रवार के शुक्रवार बृहस्पतिवार, बस इसे चक्कर में न जाने क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोगों अपने को छुट्टी ली है बृहस्पतिवार के लिए यानी आज के लिए और कल के लिए, तो नहीं पता है लोग कब मनाएंगे। बहरहाल कल इसलिए रक्षाबंधन नहीं है क्योंकि चंद्र ग्रहण है, और जब चंद्र ग्रहण रहेगा तो रक्षाबंधन नहीं मना सकते हम। बहरहाल रक्षाबंधन आज है, तो शांता जी आपको रक्षाबंधन के कार्यक्रम आज पेश करेगी। मेरे बात बोलना मत, कार्यक्रम सुनते रहना। शांता जी की कार्यक्रम रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में अगला गीत जो हम चलाने वाले हैं, गीत हमने सुने नहीं है, निगती फिरे से इवन तक का है, लता जी की ये गीत है, और हमने सिर्फ पढ़े हैं कली कली चूमे और गली गली घूमे, तो हमने सोचा चूमे घूमे ये तो काफिला तो पटता लगता है, चूमे और घूमे, तो हमने सोचा चलो सुनते हैं, आप भी सुनिए मैं भी सुन रहा हूँ। ये कली कली चूमे और गली गली घूमे, ये माजरा क्या है।

भौरा बेईमान, कभी इस बाग में कभी उस बाग में, हमने सिर्फ शब्द पढ़े थे, कली कली चूमे गली गली घूमे। तो गीत हमने भी बैठकर सुने हैं, शायद आप भी सुने होंगे। तो मुझे आप पता क्या याद हुआ, कोलिब्री यानी फूल सुहनी, आज इस बाग में कल उस बाग में, आज इस फूल में कल उस फूल में, बस ऐसे कहता यही है, मुझे ऐसा ही लगा, कोलिब्री यानी फूल सुहनी। लता जी आपको सुनाए हैं फिल्म फिल्म फिल्म मंचले में से निकलती फिर से तो कहिए गीत, सच पूछिए, शायद सालों साल हो गया होगा ये गीत हमने नहीं सुने थे, हमने पढ़े चूमे और गली गली घूमे हमने रख दिया, उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। बहरहाल निकलती फिर से तो कहिए गीत मंचले में से निकाल कर हम आपको सुनाएं, लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के साज पर।

लाल दुपट्टा हवा के झोंके में अलका याग्निक और उदित नारायण आपको सुनाए शाम के कार्यक्रम है, जबकि आप भी हैं और मैं भी हूँ। लेकिन आपसे ये पूछना चाहते हैं, आपने तोता की मैना की कहानी अपने नानी नाना आजी आजा से अवश्य सुने होंगे, हमने भी थोड़ी बहुत सुने हैं। तो वही तोता मैना की कहानी की बातें चलो हम आपको सुनाते हैं। इस तरह से आ रहा है तोता मैना की कहानी।

फिल्म फकीरा में से निकाले हैं ये गीत और आपको सुनाए हैं एवरग्रीन किशोर कुमार और लता जी की आवाज़ में। तोता मैना की कहानी पुरानी हो गई, 3:15 का वक्त करीबन। हम आपसे इजाज़त चाहेंगे अभी, लेकिन अभी नहीं, लेकिन आपको एक विशेष सूचना बता दें कि आज रक्षाबंधन भी है और मुकेश जी के याद में कार्यक्रम भी है और फाउन हिंदुस्तानी रेडियो करीबन 7 बजे, जी हाँ, फिर से फिन एक विशेष कार्यक्रम लेकर आ रहा है, अपने हित प्रेम ज्ञानी पहचान को कह देना परिवार से कि कार्यक्रम अगर हो सके तो सुने, क्योंकि फाउन हिंदुस्तानी रेडियो का एक कराओके टीम है और कराओके टीम आज लाइव प्रोग्राम करेगा। जी हाँ, लाइव प्रोग्राम करेगा, यानी रेडियो पर हम गाएंगे, कराओके गाएंगे। फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यकर्ताओं मिलकर एक कराओके ग्रुप बनाए हैं, एक ग्रुप बनाए हैं, तो वो कार्यक्रम आज पेश होगा करीबन 7 बजे। तो अगर यह मौका मिले किसी से बता देना हिति प्रेमी जान पहचान से कि अगर मौका मिले तो ज़रूर सुनना, क्योंकि आज पहली बार है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जो कराओके ग्रुप है वो हम सब मिल के बनाए हैं और एक लाइव कार्यक्रम कराओके हम सब गाएंगे कार्यक्रम में, करीबन 7 बजे होगा।

प्यारा गया रे प्यारा गया, ये शानदार गीत हमने पेश की ओवर फावन हिंदुस्तानी रेडियो। घड़ी पर देखूं तो करीब 5 मिनट बाकी 3 बजने में। यहाँ तक था ये कार्यक्रम जो मैंने पेश की। इस उम्मीद के साथ आप सबको अच्छा लगा होगा और कार्यक्रम में पेश हुआ मुकेश की याद में, जबकि आज 50 साल बीते मुकेश जी का स्वर्गवास हुआ, हमने कार्यक्रम पेश किए। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और उसके बाद आपको भी बता दूं, कार्यक्रम में मीला जी और भैया मंसूर जी भी भाग लिए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। और देखते हैं, रक्षाबंधन आज है, लोग सोचते थे कि कल है, जी नहीं, क्योंकि कल चांद ग्रहण है इसीलिए, या आज रात के चांद ग्रहण है इसीलिए रक्षाबंधन आज है। शिव नदी देखो खुश उसको। और उसके अलावा ये भी है कि आज रात करीबन 7 बजे, जी हाँ आज रात करीबन 7 बजे फंदाख फान हिंदुस्तानी रेडियो का एक कराओं का ग्रुप है, और वो कराओं का ग्रुप अपना गीत सुनाएंगे। उम्मीद है आपको अच्छा लगे। और अपने हिति प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी से कह देना, जो शायद नहीं पता है तो उनसे बता देना कि आज रात करीबन 7 बजे फान हिंदुस्तानी रेडियो का जो मेंबर्स हैं, जितने कार्यकर्ताओं हैं और सब ऊपर से मिल के एक कराओ का ग्रुप बनाए हैं, और वही कराओ का आज रात हम गाएंगे, पेश करेंगे लाइव कार्यक्रम में। मुझे इजाज़त दीजिए, मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला रविवार को, जी हाँ आने वाला रविवार को, और गीत गज़ल के कार्यक्रम में। 2 सप्ताह हम नहीं थे, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, और बाकी के क्षमा शनिवार रविवार को मांग लेंगे। मैं आपसे मिल रहा हूँ आने वाला रविवार 8 से 10 भैया यूसुफ के साथ गीत गज़ल के कार्यक्रम में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे सहयोगी आपके सेवा में रहेंगे। और आपको पता है रिक्लाम के बाद प्रोग्राम के हिसाब से शांता जी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये 2 कार्यक्रम पेश करने वाले हैं, पहला घंटा और 2रा घंटा। मुझे इजाज़त दीजिए, आप सबके एक शुभ शाम।

कुर्सी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा मखेंता वेग 259 बाय ऑटो फॉर हीर बिड्रेव अमालिया। सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो, टोयोटा रक्टिस, टोयोटा फिट्स। Contact in Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 418 8873. Autoverhuurbedrijf A.

और बाबला मेहता से हमने सुने सुने वालों ये सुंदर सा राखी स्पेशल यहाँ से आपके लिए आरंभ किया जाता है या आरंभ हो गए हैं आप ही के लिए। जैसे आपको पता है तो रक्षाबंधन है, तो रक्षाबंधन के उपलक्ष पर आपको बहुत सारे बधाइयाँ हैं। कहते हैं भाई के जैसा प्यार ना हम किसी को कर सकते हैं ना कोई हमें कर सकता है। भाई बहन का प्यार बहुत पवित्र प्यार है। बहन की प्यार किसी दुआ से कम नहीं होता। वो चाहे कितने भी दूर हो, पर प्यार कम नहीं होता। आपको रक्षाबंधन के बहुत सारे शुभकामनाएं पेश किया जाता है आप ही का फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। प्यारे सुनने वालों

स्टीवन बेन और श्रिया घोषाल से हमने सुने ये सुंदर सा रक्षाबंधन गीत। सुनने वालों, आप ही के लिए, बिल्कुल आप ही के लिए तोहफा के रूप में आप ही का फोन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। रेशम के धागे का है ये मजबूत बंधन, रेशम के धागे का है ये मजबूत बंधन, माथे पर चमके चावल रोली और चंदन, प्यार से मिठाई खिलाए बहन प्यारी। सबसे निराले सबसे निराले सबसे न्यारा सबसे प्यारा मेरा भाई, लड़ता झगड़ता पर प्यार भी उतना ही करता, हर खुशी में है मेरा प्यारा भैया, हर खुशी में है मेरा प्यारा भैया। रक्षाबंधन की आपको हार्दिक से बधाई है।

त्योहार है, रक्षाबंधन का त्योहार है, भाई बहन की मीठी सी तकरार है, ऐसा ये प्यार और खुशियों का त्योहार है, कलाई पर रेशम का धागा है, बहन ने बड़े प्यार से बांधा है, बहन को भाई से रक्षा का वादा है, रक्षा

है कि एक हज़ारों में, जी हाँ एक हज़ारों में आपकी और आपकी बहना है किशोरदास जी से हमने सुने। सुने वालों, और फिल्म का नाम जैसे आपको पता है, नहीं पता है तो हम यहाँ से बता देते, हरे रामा हरे कृष्णा। अनोखा भी है, निराला भी है, तकरार भी है तो प्रेम भी है। बचपन की यादों का पिटारा है, भाई बहन का ये प्यारा रिश्ता है। रक्षाबंधन

रफी जी के आवाज में हमने सुने सुने वालों की राखी धागो का है त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार है, हर तरफ खुशियों का बौछार है और बांधा एक रेशम की डोरी में भाई बहन का प्यार है। चंदन का टीका, रेशम की धागा, सावन की सौगात, बारिश के फुहार, भाई की उम्मीद, बहन का प्यार, बधाई हो आप सभी को रक्षाबंधन का ये

कच्चे धागों का रिश्ता। फिल्म रक्षाबंधन से ये सुंदर सा गीत श्रिया घोषाल और अर्जित सिंह जी की आवाज में सुने हम। बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, बहना ने भाई की कलाई से प्यार बांधा है, कच्चे धागों नहीं खुशियों की डोर का, खुशियों की डोर को बांधा है, भाई बहन की यारी पूरी जहां से प्यारी।

का भाई पर भरोसा है, कलाई पर रेशम का धागा है, बहन ने बड़े प्यार से बांधा है। रक्षाबंधन के दिन भगवान से बस यही दुआ प्रार्थना है, किसी की नजर ना लगे, दुनिया की हर खुशी हो तेरी, सबसे अलग है, सबसे अलग है, सबसे प्यारा है भैया मेरा। विश्वास का धागा, प्यार का धागा, खुशियों का धागा, यादों का धागा, दोस्ती का धागा, मन का धागा, भाई की कलाई पर बहन ने प्रेम से बांधा। रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। एक सुंदर सा गीत, वो उनके लिए जिसकी भाई बहुत दूर है।

जी हाँ, दिल छू जाने वाले गीत है जो लता जी से सुने। सुने वालों, मेरे भी स्टूडियो में आंख भर आई गला थोड़ा से। हाँ जी हाँ, उनको भी हम याद करते हैं जिनका भाई बहन, भाई बहन से दूर है या बहन भाई से दूर है, फिर भी आप सभी को बहुत सारे प्यार मिले और दिल दिल में जरूर से आप उनको भी याद करें। मेरा भाई चंदा से भी प्यारा है, सूरज से न्यारा, माँ ने दिया जन्म मगर तूने ही उसे संवारा है। चंदन की लकड़ी फूलों का हार, अगस्त का महीना सावन की फुहार, भैया की कलाई बहन का प्यार, बधाई हो आप सभी को रक्षाबंधन का ये पवित्र त्योहार। हमेशा रखना प्यार भरा व्यवहार, हमेशा रखना प्यार भरा व्यवहार, बधाई है भैया रक्षाबंधन का ये त्योहार। आसमान पर सितारे हैं जितनी, उतनी जिंदगी हो तेरी प्यारे भैया, किसी की नजर ना लगे, दुनिया की हर खुशी हो तेरी। बहन चाहे सिर्फ प्यार, दुलार नहीं मांगती बड़ा उपहार, रिश्ते बना रहे सदियों तक, मिले भाई को खुशियों हाथ।

जी सुनने वालों, ये रक्षाबंधन सब त्योहारों में से भी बहुत बड़ा त्योहार है। हम देखे तो कविता पौडवाल जी के आवाज में हमने यहाँ सुने ये सुंदर सा गीत। ये गीत जो हम देखे तो लेखन तीन फिरन तख्तक में ये रिलीज किया गया है। कच्चे धागों से बनी पका डोर के राखी, मिला है कितना प्यार मुझे तुझसे ओ बहना, मिला है कितना प्यार मुझे तुझसे ओ बहना, कैसे मैं ये दो लफ्जों में बताऊं। तू रहे खुशी, तू रहे खुश हमेशा, इस दुआ का साथ आज मैं सर को झुकाऊं। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं।

चाहे एक ही दिन साल में, वैसे तो भाई बहन का प्यार हमेशा रहता है, पर मनाने के लिए, इतला करने के लिए, जताने के लिए ये त्योहार आ जाता है। जिनके बहन नहीं होते हैं वो बहुत दुखी होते हैं, और जो आपके हैं, आप भाई बहन हैं, तो ज़रूर से ये पर्व खुश होकर और मनाएं। यही एक मौका भी होता है, अगर मन मोटा हो तो वो मन मोटाव पिछले में छोड़ कर और आगे बढ़ जाओ। भाई बहन का पवित्र रिश्ता, रक्षाबंधन के आपको बहुत सारी बधाइयां पेश है। रक्षाबंधन ओ कुवेल बकंत आस राखी इस अनहिंदुस्तान से फेस्टिवल दैट द लिफ्ट एंड द बस्केरमन द पंतुसन ब्रोर एंड सुसन फीर हेट वर्थ रक्षा बतेकन बस्केरमिंग एंड बंधन बतेकन बंत तुस हेट फेस्टिवल सिंबोलिसेट द बंत फन बस्केरमिंग Tijdens Rakshabandhan bent een zus aan Rakhi een speciale armband om de pols van haar broer als teken van liefde en bescherming. De broer belooft in ruil daarvoor zijn zus te beschermen

0: रक्षाबंधन के हार्दिक से बधाइयां पेश किया जाता है। सच्चे धागों का है ये बंधन, सच्चे धागों का है ये बंधन, प्यार भरी है इसकी हर एक धड़कन। बंधन का प्यार और भाई, बहन का प्यार और भाई का साथ, बधाई हो राखी का ये पावन दिन। प्यारे सुनने वालों,
1: हिंदुस्तानी रेडियो हर काम के लिए, हर अक्षरतेंसी के लिए, मौत के समाचार, फरमाइशे या जो भी खबरें आपको देना है, आप जाइए हमारा वेबसाइट है और हमारा ईमेल है info@fahunfm.nl। हर एक एडवर्टेंसी, हर एक काम के लिए आप तार कर सकते हैं सोमवार से लेकर शुक्रवार तक सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अब टेलीफोन नंबर 07 3 2347। इन्फो www.radiofahunfm.nl of mail ons op info@fahunfm.nl. Nogmaals, maandag tot vrijdag tussen 9 en 5 kunt u bellen op nummer 070-365-2247.
2: Muziek en informatie. Bij Fahon Hindustani Radio.
0: अनोखा भी है, अनोखा भी है, निराला भी है, अनोखा भी है, निराला भी है, तकरार भी है, प्यारा भी है, अच्छी यादों का पिटारा भी है, ऐसा ही राखी का रिश्ता संवारा है। रक्षाबंधन का त्यौहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, आप सभी को हार्दिक से बधाई पेश किया जाता है। स्वागत है, स्वागत है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है। बंधन एक रेशम की डोरी में बांधा है, एक रेशम की डोरी में भाई बहन का प्यार।

फकीर भी जो बहन के भाई नहीं होता वो भी कितनी दुखी होती है कि वो कलाई नहीं मिलती जिस पे वो राखी बांध सकते। सच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी रिश्तों की डोर है राखी, भाई भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन की बहन के प्यार का पवित्र दुआ है राखी।

रिश्ता है जन्मों का हमारा, रिश्ता है जन्मों का हमारा, भरोसे का और प्यार भरा। चलो चलो इसे बांध दे, इसे बांधे भैया राखी के अद्भुत बंधन में। हैप्पी रक्षाबंधन।

अब हाय ने बहन से ये वादा कर ली है और कहते हैं कि अपनी दुआओं में जो उसका जिक्र करता है वो भाई है जो खुद से पहले बहन की फिक्र करता है।

तो पागल है ये सुंदर सा इंस्ट्रूमेंटल। यहाँ से मिलकर हम सुने काफ़ी दिनों के बाद एक अच्छा सा इंस्ट्रूमेंटल आपके लिए पेश कर रही थी, और यहाँ से आपके लिए एक स्पेशल

हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन आप सभी को। सात पले और सात बड़े हैं, बढ़े हैं, हाँ भाई बहन सात पलते हैं, सात बढ़ते हैं। खूब मिला बचपन में प्यार, जी हाँ खूब मिला बचपन में प्यार, इसी प्यार को याद दिलाने आया है राखी का त्योहार। प्यारी बहना तुम हमेशा प्यार और हंसी से भरपूर रहे, ये एक भाई की प्रार्थना है, दुआ है अपनी बहन की ओर कि प्यारी बहना तुम हमेशा प्यार और हंसी से भरपूर रहो, ये राखी हमेशा हमारे रिश्ते को और भी मजबूत

सुंदर अति सुंदर ये सुंदर सा रक्षाबंधन गीत आपके लिए पेश हो रहा है। कच्चे धागों से बनी पक्की डोर है जी मेरे प्यारे सुनने वालों की, कच्चे धागों से बंधी पक्की डोर है राखी, प्यार और मीठी शरारतों की डोर है राखी, भाई भाई की लंबी उम्र की दुआ है राखी, बहन के प्यार का पवित्र दुआ है राखी। रक्षाबंधन का त्योहार है मेरे दोस्तों, रक्षाबंधन का त्योहार है, हर तरफ खुशियों की बौछार है और बंधा एक रेशम की डोरी में भाई बहन का प्यार है। रक्षाबंधन की आप सभी को हार्दिक से

दिल से करते हैं शुक्रिया, हाँ तहे दिल से करते हैं शुक्रिया उन प्यारी बहनों को हम, जो पास रहे या ना रहे पर उनका प्यार कभी नहीं होता कम। या रब मेरी दुआओं में इतना असर रहे, फूलों फूला भरा सदा मेरी बहना का घर।

0: सन आपको फाओ हिंदुस्तानी रेडियो के तरफ से रक्षाबंधन के बहुत सारे शुभकामनाएं पेश हो रहा है।
1: तो आप कार्यक्रम में हैं जो लोग चुन के मीटर पर, आपका हृदय से स्वागत है BBB.FM.NL पर। चलिए कार्यक्रम में हम चलाते हैं, या ख्याल है अगर मैं आपको ये सुनाऊं, इस तरह से आ रहा है।

तुमको हमसे प्यार है, अब किस तरह से प्यार किया जाता है, यही कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए हैं। अब प्यार की सिलसिला अगर है ही है तो हम आपको बताते हैं कि प्यार कैसे किया जाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जी हाँ, ये उदित नारायण कह रहा है फिल्म मोहरा में कि सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक और वगैरह वगैरह कैसे प्यार किया जाता है। चलो इन्हीं लोग से सुनते हैं, क्योंकि ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोगों को प्यार करना नहीं आता, तो सीख लेते हैं कुछ भी।

अच्छा, हमने भी सीख लिए कि प्यार कैसे किया जाता है। उम्मीद है आप भी सीख गए होंगे, और अगर आप जानकारी थे नहीं सीखे हैं तो कोई बात नहीं है। चाहे अगर प्यार की बातें तो हम आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि देखते हैं इस तरह से।

फिल्म गुमनाम में से निकाले हैं, ये नया गुमनाम है, ये मनोज कुमार के डरावनी गुमनाम नहीं है, ये नया गुमनाम है। इसमें उदित नारायण और श्रेया घोषाल मिल के आपको ये गीत सुनाए हैं फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में।

हाँ, क्या बात है। हाँ, कुमार सानू और अलका याग्निक आपको सुनाए हैं ये प्यारा गीत हमने पेश की। चलिए अगला नंबर चलाने वाले हैं हम, और वो ये है एवरग्रीन किशोर कुमार। क्या ख्याल है?

0: वंडरफुल वंडरफुल।
1: फिर मजाक कर रहे हैं कुमार बहादुर।
2: शेखर बाबू, नम्रता अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा नम्रता भी अच्छी नहीं। रोशनी होगी इतनी, किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। शेखर बाबू, क्या आप इस अकेले सुनसान महल में संगीत और उल्लास की वो खोई जोत फिर से ला सकते हैं?
1: मैं कुछ समझा नहीं कुमार बाबू।
2: ये तस्वीरें देख रहे हैं आप?
1: जी,
2: हमारे पुरखों की हैं। इनमें कोई शराबी था, कोई व्यभिचारी और कोई इंसान भी था, लेकिन शिकारी सभी थे। आई मीन हत्याकारी।
3: डायलॉग के साथ हमने पेश की राजकुमार और विनोद मेहरा का ये डायलॉग। गीत के बाद आता है तो हमने सोचा इसे अगर चल रहा है तो इसे चलने दो।

मैं तो मुकेश द हार्ट ऑफ मिलियंस, आंखों में तेरी याद लिए जा रहा हूँ मैं। ये ब्रोकन हार्ट सॉन्ग हमने पेश की फॉन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। चलिए, अगर आप थोड़े से स्लो हो गए होंगे, थोड़ी से गमी में आ गए होंगे, तो हम आपको ये सुनाते हैं इस तरह से।

कुर्सी नाम जाना है, गाड़ी हीर करना है तो आपको जाना पड़ेगा मां खेंता व्यक्ति 159 बाय ऑटो फॉर हीर बिड्राइव अमालिया सेर जुइनिगे ऑटो सोअल्स टोयोटा प्रीमियो टोयोटा रक्टिस टोयोटा फिट्स कॉन्टैक्ट इन Suriname de heer Parkas Gokul op telefoonnummer 00597 87 57 939. Contact in Nederland 06 57 418 8873. Autoverhuurbedrijf A.

सुनने वालों श्रोताओं, ये इस वक्त एक टेस्ट है। अभी कुछ देर बाद हम लोग लाइव कार्यक्रम में आएंगे कराओके लेकर, जिसे आप लोगों से हमने बताया है आज दोपहर में कार्यक्रम में करीबन 7 बजे हम लोग शुरू करेंगे कराओके कार्यक्रम, और जो लाइव गाया जाएगा फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के स्टूडियो से। हम लोग फाउन स्टूडियो के जितने मेंबर्स हैं ओम रूपर से कोशिश किए कराओके को खूब बनाने को, और वो बन चुका है, और आज पहली बार हम लाइव पेश करेंगे। थोड़े देर इंतज़ार कर लेना। हाँ, एक बात और है, अगर जो आपके हिती प्रेमी जान पहचान ग्राम निवासी परिवार शायद उन लोगों को नहीं पता है, तो इतनी देर में शायद आप तार करके उन लोगों को बता सकते हैं कि अभी लाइव कार्यक्रम हम लोग कराओके करेंगे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा, प्रसंतित बाई फाउन हिंदुस्तानी रेडियो दोर कोलिगास।

रोग ग्रुप जो है उसको हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। मी में शामिल आ रहा है अनिल सरजू।

0: स्टूडियो से इस वक्त लाइव का रुख हो रहा है और अभी आप सुन रहे थे जॉनी नंबर वन से, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है और काफी लोग हैं यहाँ, हमारा पूरा टीम है, पूरा टीम है, तालियां तालियां तालियां हो जाए, हमारा पूरा टीम है दोस्तों इस वक्त। भाई गंगा है, भाई सुरेंद्र बिरबल भी है, भाई राजन द्वारका है, मैं हूँ अनिल सारजू और रजेश भी है, दिदिया भी है, शांता भी है, दिदिया बारी बारा हम लोगों आप लोग सुनाएंगे लाइव पे। चलो हम देते हैं इस वक्त भाई गंगा को जो अभी इस गाने को आपको सुनाएंगे। भाई गंगा तो लीजिए।
1: सुन ले वालों श्रोताओं, हाँ या हाँ

0: श्रद्धांजलि के साथ मुकेश जी के 50 साल हुए, 50वां साल मना रहे हैं, मना नहीं रहे हैं, याद कर रहे हैं, क्षमा याद कर रहे हैं। 50 साल हो गया श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए फाउन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा। आज हम लोग पहला कार्यक्रम पेश कर रहे हैं, तो फिर बागडोर हम दे रहे हैं भैया अनिल। भैया अनिल
1: जी। हाँ दोस्तों, अभी जैसे आप हमारा भाई गंगा ने कहा है, आज हम लोग याद में गाते हैं। मुकेश का 50 साल हो चुका है और हम सब उनकी याद में लाइव करो कहे फाउन हिंदुस्तानी रेडियो पे दनाक शहर से हम लोग इस लाइव प्रोग्राम को करते हैं। और हमारा भाई हमारा राजन द्वारका जो है हमारा एक कोलीग का है, उम्र ऊपर है फाहुन का, वो गाने के तैयार है भाई। आप गाने के लिए तैयार है?
2: जी हाँ जी।
1: ठीक है, थोड़ा बातें कर ले, तब तक हमारा बहन इस गाने को रखता है और पेश करेगी सेहस आत्मा का एक गीत। कहने को बहुत कुछ था भाई, कितने दिन से आप ये गाने को गाते हैं? कितने दिन से?
2: 2-3 महीना हो।
1: 2-3 महीने से हमारा भाई इस गाने को गा रहा है, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करने से हर एक चीज़ मिल जाते हैं, ढूंढने से भगवान भी मिल जाते हैं, तो कोशिश करते से क्यों हम नहीं गा पाएंगे। ठीक बात है ना? ठीक है, और देखा जाए तो भाई ठीक है। और राइट, अभी ठीक नहीं इतना, हम लोग गाने खोजते। आज पहला बार है हम लोग की, पहली बार है जो हम लोग कारो करते हैं लाइव, कारो का हम लोग करते हैं लाइव लाइव लाइव स्टेडियो से रेडियो पे लाइव है दोस्तों। और आज रक्षाबंधन है, बिल्कुल रक्षाबंधन के गाने भी हो गए। मौसम भी बहुत अच्छा मौसम है, बढ़िया मौसम है, देखा जाए तो सरसराहट हवा चल रहा है। दनाक शहर से हम लाइव प्रोग्राम को करते, ट्वेन तक रात हो चुका है, देखा जाए अभी रात के ट्वेन तक रहेगा या और कुछ होगा।
2: अनिल, रक्षाबंधन आज है कि बिहान?

0: रक्षाबंधन एक लग बयान है बयानों भी आज हफ्ता भर रक्षाबंधन है
1: साल भर
2: ना दरअसल में भैया द्वारका सुनने वाला श्रोताओं बयात ऐसे हैं कैलेंडर पर आप देखे होंगे कि लिखा है सैफ नंतुंदख और इंटरनेट द्वारा पता चला आख्तनतुंदख लिखी आख्तनतुंदख को तो फॉलो मान है लेकिन आनखसीन बिहान ये चंद ग्रहण रही मानफर दिंग रही इसीलिए 27 तारीख यानी आज हम लोग रक्षाबंधन मना रहे हैं। यहाँ तक मेरा ख्याल है अगर धरती पे देखा जाए 187 देश है जहाँ जहाँ हिंदू बसे हुए हैं रक्षाबंधन मना रहे हैं। ऐसा भी होता है कि भाई बहन के पास जाता है या बहन भाई के पास जाता है लेकिन यूरोप तो इतना दूर है सूरीनाम से यूरोप बहुत दूर है इसीलिए राखी कभी कभी एनवेलप में मिल जाता है इसे ना है भैया भैया
3: यहाँ होता है सभी सुनोड़ों को हमारे से तरफ से भी आप सभी को एक हैप्पी हैप्पी रक्षाबंधन। और आप लोग तो सुन रहे हैं लाइव हो रहा है हम लोगों के बड़े स्टूडियो से फाहुन हिंदुस्तानी के रेडियो के माध्यम से। तो पहला बार है हम लोगों के लिए तो अफेन टू हैव अम्बेच हापरंद सिटीवासी हियर मार अतवत एखनार वेरक्त सोमसला देतनी ओप डातनी ओप वेट सोमसला द टेक्निक ओंस इन द steek en aangezien het de eerste keer is. Maar ik denk dat we bijna zo ver zijn om bhai Rajan hier voor de microfoon te halen. Toch ghar aap log zarur maze lete rehna aur raksha bandhan hai aur sabhi ko malum hai lakhon karod ka dil churane wala the heart of millions.
0: Seha
3: Atma
0: Rajan Dwarka se aap sunenge dosto live.

0: बहुत कुछ था मगर कह नहीं पाए।
1: वाह क्या बात है भैया राजन द्वार का, जाना पहचाना आवाज है, जानी पहचानी पर्सन है ऑन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में। और जहाँ तक मेरा ख्याल भैया राजन रहता शुक्रवार को और अच्छा आने वाले दिनों में वो बुधवार बृहस्पतिवार यानी दोंदर तक को भी रहेगा। बहरहाल भैया राजन द्वार का वो सर्कल भी चलाता है, एक मनोक्लब है, उसके बारे में एक दिन फिर बातचीत करेंगे। भैया भैया राजन को जहाँ तक मेरा ख्याल है मुझे एक दिन इंटरव्यू करना है सर्कल के बारे में। हाँ एक दिन बनाकर जब हम लोग अपॉइंटमेंट बना लेंगे, बातचीत कर लेंगे, तो आपको हम सिलाएगा लाइव कार्यक्रम ताकि लोग भी जान जाए मनोक्लब राजन द्वार का किस तरह से चला रहा है। भैया अनिल तो पहली बार वहाँ था, दोस्त भैया अनिल को पता है। और जहाँ तक मेरा ख्याल है फाहुन के बहुत लोग पहला दिन वहाँ पहुँचे थे। हाँ पूरा फुल टीम फाहुन का। अच्छा तो फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के पर आप चून हैं, जो लोग चून किए आपका हृदय से स्वागत किया जा रहा है। पहली बार फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो का कार्यक्रम ग्रुप आज लाइव कार्यक्रम में है फाहुन के रेडियो पर। अगर जो हो सके तो अगर शायद आप अपने हिति प्रेमी जान पहचान को नहीं बताए होंगे तो उसे जल्द से बता देना कि फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के कार्यक्रम में इस वक्त फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी कार्यकर्ताओं जो है जैसे शांता जी है, भैया सुरेन बिरबल है और हमारा डीजे टेक्निकस है श्रीमान रजेश बदलू, क्योंकि चार पांच गो है तो हमको याद करे कौन रजेश बदलू और राजेंद्र द्वार का तो है ही भैया अनिल मेरे बाजू में बैठा हुआ है और भैया जॉनी नंबर वन थोड़ा गया है घर पर कुछ लाने के लिए तो वो रास्ता में होगा अभी आ रहा है। और ये भी है कि आज 50वां जो साल हुआ है मुकेश जी का, आने वाले दिनों में शायद हमारे उम्र पर सुन के उसके बारे में और आपको बताएंगे। 50 साल हुआ है, एक मिनट देखते हैं मृत्यु, हाँ 50 साल हुआ मृत्यु में, 50 साल हुए श्रद्धांजलि अर्पण कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं, मना तो नहीं रही हैं, शुरू में हमने कहा मना जिन्हें मनाते नहीं हैं याद करते हैं। और जहाँ तक मेरा ख्याल है हमारे आने वाले पीढ़ी जो है तो बॉलीवुड के गायक जो आज जहाँ तक मेरा ख्याल है अब पुराने कुछ नहीं कोई नहीं बचा है, जहाँ तक मेरा ख्याल है पुराना कोई नहीं बचा है, आवाज़ बचा और ये आवाज़ वही में हाँ उनकी आवाज़ अमर हो गया है। आपको बता दूँ कि जहाँ तक मेरा ख्याल है वो आवाज़ अभी तक गूंजेगा, हम दो लोग नहीं रहेंगे शायद अब से 50 साल बाद, हम तो सही करना रहा बहरा हम लोग जो यहाँ हैं बैठे हुए 50 साल बाद भी जहाँ तक मेरा ख्याल है 100 साल तक हम उसे उन लोगों को याद करते रहेंगे। हम छोटे स्टूडियो से पेश कर रहे हैं बड़े स्टूडियो में, यहाँ पर भैया रजेश बदलू इस वक्त बैठा हुआ है, वो वहाँ से आपको कुछ बताएगा या कुछ चलाएगा। एक छोटा सा ब्रेक

0: तो सुनने वाले श्रोताओं, जी हाँ सुनने वाले श्रोताओं, जैसे मैंने कहा था आज दोपहर को कि 7 बजे हम शुरू करेंगे, तो पहले तो टेस्ट था लेकिन यहाँ से कार्यक्रम हम शुरू कर रहे हैं। और सब जवानों जितना है अप्लाउस फॉर कराओके ग्रुप पाउंड
1: यमन एकदम दोस्तों, थैंक यू और देखा जाए तो मेरा पारी आ गया है लेकिन गनवा के चाहिए
0: भैया जॉनी इस वक्त
1: जोर तोड़ से बेशक है मार। हाँ, कुछ सुनान है मार,
0: कभी कभी कुछ गड़बड़ा है,
1: मशीन से धर दिए तो भाई अस्तबलीफ।
0: तो लीजिए माइक्रोफोन के सामने आ रहा है हमारा अमरूपर

0: نعم
1: अच्छा ओके सुनने वाले
2: ओके दोस्तों
1: ओके

0: धन्यवाद भैया सुरेन बीरबल के बाद हम पेश कर रहे हैं अनिल सरजू जी को, लेकिन अनिल सरजू इस वक्त माइक्रोफोन ढूंढ रहा है कि है कहाँ। हाँ भैया तुम्हारे पीछे पड़ा है, मिल जाएगा। बहरहाल भैया अनिल सरजू, भैया अनिल सरजू का जहाँ तक मेरा ख्याल है इस साल जनवरी में यहाँ आया है, लेकिन हम लोगों के साथ ऐसा मिल घुल मिल गया है जैसे दूध और पानी। हालांकि हम लोग यहाँ बहुत पुराने हो चुके हैं, भैया अनिल सर जो सबसे जवान है, अच्छा यहाँ पर
1: सच बात है,
0: सबसे जवान है। हम लोग तो अब जा रहे हैं, हम लोगों का पासपोर्ट इस वक्त ढूंढा जा रहा है कि स्टैंपल करूं। फरलंग भाई ले
2: तो 53% van Nederlanders vindt dat ze te veel betalen voor hun verzekering. Daarom zitten wij in Cheer. Wat we met de premie doen.
0: लेकिन मुझे डर है कि पा जाए फल स्टैंपल न कर दे। बहरहाल तो सुनने वाला श्रोताओं, जैसे मैंने कहा था 7 बजे हम लोग शुरू करेंगे, तो 7 बजे शुरू कर दिए हैं और माइक्रोफोन के सामने अब आ रहा है भैया अनिल सरजू। हाँ भैया अनिल सरजू के बारे में कह रहे थे, भैया अनिल सरजू शुक्रवार को कार्यक्रम में रहता है और
1: मंगलवार फ्राइडे के हम प्रोग्राम करते हैं।
0: भैया अनिल सरजू का कार्यक्रम आप अवश्य सुनते रहना और बहुत बहुत
1: ओके ठीक है दोस्तों, हम भी कुछ सुनाते हैं।

0: हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, भी आप सो रहे थे हमार आवाज से अनिल सरजू, और हम आगे प्रोग्राम चलते हैं। आप जानते हैं लाइफ है, दिनांक शहर से हम लाइव करते हैं। आज पहली बार है हमारा करो का टीम, फहन करो का टीम है, काफी लोग हैं हमारे हमारे टीम में, यानी कि भाई सुरेंद्र बीरबल, भाई राजन द्वारका, भाई गंगा, भाई जॉनी नंबर वन, हमारा बहन शांता, हम हैं अनिल सारजू, और हमारा ऑपरेटर जो सभी कुछ यहाँ संभालते हैं, टेक्निकल से राजेश,
1: सब बाग राजेश के हाथ में, वही बना सकता है वही बिगाड़ सकता है। एक डीजे
0: सिर्फ बनाना भाई, बिगाड़ना मत,
1: नहीं वो बहुत सिर्फ बनाता है। हाँ तू सुन ले श्रीमान। हाँ अच्छा ओके, जहाँ तक मेरा ख्याल है अब किसकी बारी है,
0: शांता दीदी के।
1: शांता जी और

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, भी आप सुन रहे थे जॉनी नंबर वन और शांता दीदी की आवाज, तुझे देखा तो ये जाना सनम। आप सब चुने फाउन हिंदुस्तानी रेडियो से देफर ग्रीन लव। ठीक है, हम चलते हैं आगे और हमारा दूसरा कलाकार तैयार है गाने के लिए।
1: एकदम
0: एकदम तैयार हो भाई द्वारका,
1: एकदम तैयार।
0: ठीक है, चलो। आज 50 साल हो चुका है कि अब मुकेश हमारा बीच नहीं है, लेकिन आवाज को छोड़ गया है जो हमेशा के लिए जीवित है। आज हमारा भाई राजन द्वार का एक मुकेश का गाना आप लोग को सुनाने वाला है। अभी गाना खोज रहा है, मिल गया है और आ रहा है भाई।
2: Krijg nu korting op deze laptop. Okay. Tijdens de Back to School Deals.

0: शाबाश शाबाश भाई राजन द्वारका, क्या अंदाज में गाया है, मुकेश के गाया हुआ गाना है जो राजन द्वारका ने गाया है।
1: वाह सारंगा, ये शानदार गीत पेश हुआ भैया राजन ने पेश की, जैसे आप लोग को पता है। अगला गायक आ रहा है, बस वो है भैया शांता जी, कौन है जो, अच्छा हमारा राजा, ओ अच्छा
0: हमारा जॉनी भाई, जॉनी नंबर वन,
1: रॉय जॉनी नंबर वन, वो सेठ की तरह भी यहाँ बैठा था, हम भी चौंक गए क्यों सेठ की तरह बैठा था वो, इतनी खुश कि कार्यक्रम में उनका लैपटॉप आ गया और वो लैपटॉप द्वारा गीत गा रहा था, बहुत खुश था, बहुत खुश था, देखने लायक था किस तरह से जॉनी बैठा था। अच्छा
2: ये तारीफ नहीं थे, यानी जहाँ पे दोस्त है दोस्त लोग के तो लेड़ ना चाहिए चल करे कि हम वो आदमी भैया गंगा जहाँ पे कसाबा ना जमे है वहाँ भिंडी जमा देला भगवान के कृपा से। एक ही दिमाग लगो है भैया, वेलकम है रखू
3: भी बोले है ना, जहाँ चार यार मिल जाए वही रात हो मिल जाए।
2: दोस्तों के धोखा अपन जिंदगी में कभी नहीं देना भाई, अपने आप को कभी नहीं देखना, दूसरों को देखो, उस जो वो चलेगा तू भी उसके पीछे पीछे चलेंगे, जलन द्वेष दुनिया पे कभी नहीं चाहिए भैया सुरेन। रफी ए लता जी का एक सॉन्ग है।

0: शाबाश शाबाश शाबाश, क्या गाना था। और गाने वाले थे हमारा मशहूर अनाउंसर साथी, द वन एंड ओनली, हमारा टीम लीडर, हम लोगों का मैस्ट्रो जॉनी नंबर वन, और साथ दे रही थी हमारे शांता बहन जी।
1: वाह क्या बात है। अभी आप दिव्या सुन रहे थे। अनिल, कौन फिल्म के तुमके याद है?
2: फिल्म
1: सोलह सबनम के बाद चलिए देखते हैं, माइक्रोफोन के सामने आ रहा है हमारा बारिटोन वॉइस लेकर श्रीमान बीरबल, जिन्हें आप बीरबल के नाम से जानते हैं, लेकिन सुरेन भगवान दीन और तुरतल नाम है भैया, तो क्या है और कोई? हाँ, कृष्ण दत्त, वो तो पुस्तक के नाम है, मिस्टर टोपी वो भी है।
3: हाँ
1: अच्छा, जिस समय आप कोशिश कर रहे हैं वो अपने हिती प्रेमी से बता देना कि फाउन हिंदुस्तानी द्वारा रेडियो द्वारा कराओका कार्यक्रम पेश हो रहा है, और हम सब वही कुली खास है, कोई कुली खास है
0: तो जो जी हाँ दोस्तों।
1: अच्छा भैया सुरेंद्र,

0: धन्य वाद।
1: ओके ठीक है दोस्तों,
2: वाह क्या बात है। ये था सुरेन भगवान जिन्हें आप बीरबल के नाम से भी जानते थे। यूं कहिए कि हेमंत कुमार की आवाज इन न्यू यश।
1: या सच्ची बात है, सच्ची बात है या आवाज की दुनिया का बेताब बादशाह।
2: तो अगला गीत आने वाला है हमारा, जो जहां तक मेरा ख्याल है सबसे जवान है यहाँ हम लोग के बीच,
1: हम ही सबसे जवान
2: है। अनिल सरजू।
1: ओके सरजू ठीक है, चलो आज 50 साल हो चुका है मुकेश हमारा बीच नहीं है, तो हम एक गाना मुकेश की याद में एक गाना गाते हैं।
2: जरूर जरूर जरूर
1: ठीक है।

0: पास श्रीमान अनिल सरजू हमारा अनसुर साथी है दोस्तों, और उसका आवाज जो है वाह क्या बात है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद भाई।
0: होने होने होने माइकी मुकेश का 50 साल होता है जब वो दुनिया में नहीं है, और उसी के याद में खास करके अनिल सरजू के आवाज में भी आप ये सॉन्ग को सुना।
1: जी हाँ दोस्तों, हमारा भाई गंगा भी आ रहा है।
2: आप माने या ना माने, बल्कि अनिल सरजू की आवाज में फिब्रांसी मिसाल।
3: अच्छा भैया, हम लोग के पे रखना
4: है। टू ऑन अ न्यू फीच बाय मॉन्टल थिंक यू द बेस्ट अमेरिकन विद।
1: जी हाँ दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद हो भाई गंगा, आप भी एक बहुत अच्छा कलाकार है।
2: ओके, सुनने वाले श्रोताओं, एक बात कहना चाहता हूँ, जब तक गाना ढूंढा जा रहा है, अच्छा थोड़ी से हाँ गाना ढूंढा जा रहा है, रफ़ी साहेब और मुकेश जी की दोस्ती, रफ़ी साहेब मुकेश जी की दोस्ती ऐसा था कि जब मुकेश जी का स्वर्गवास होया, उनका पार्थिव शरीर जब बॉम्बे आया, उस समय मोहम्मद रफ़ी हॉस्पिटल में था, वो बीमार था, लेकिन उसके दिमाग में ये रहा कि मैं अपना दोस्त के क्रियाक्रम में कैसे जाऊं, तो वहाँ के बॉय से बात की और पिछले दरवाजे से लंग फरहाल कोर्ट पिछले दरवाजे से पहुंच गया शमशान भूमि। वहाँ उनका साला था, उनका ड्राइवर था, बेटियाँ थी, पूछे ये कैसे आ गया, तो ड्राइवर ने पूछा कि दादाजी कैसे आए, बोले बाद में बताएंगे। अगर भाई आए कैसे आए बाद में बताएंगे। वो नहीं रह सकता था हॉस्पिटल में, शमशान भूमि पहुंच गया रवि साहब।
1: जी ये था,
2: ये दोस्ती था,
1: ये दोस्ती था। अब हम दोस्ती प्यार में बदलते ही, आवास में बदलते ही, हमारा भाई गंगा गाने के लिए तैयार है। क्या अंदाज में गाते ही, बहुत ही बढ़िया सुर में, बहुत ही अच्छा गाते हैं। और
2: कुछ ज़्यादा ना तो बोलते नहीं।

0: बस वही मुकेश जी और रफ़ी साहब की दोस्ती निक के बारे में हमने कहा, इसीलिए हमने सोचा कि रफ़ी के एक गीत गाऊँ, उनके दोस्त को गीत के गीत गाऊँ। देखो भैया जॉनी इस वक्त आ रहा है।
1: भैया गंगा, आपकी आवाज़ जो है उसमें सोना की आवाज़ है ना। तो दोस्तों घड़ी की ओर देखा जाए तो रेडियो फोन में थिंग मनी थिंग फॉर आ हो चुका है। शांता जी थिंग फॉर आ हो चुका है। अब हम सब जा रहे हैं रिक्लाम की ओर और हमारा जो होस्ट तकनीकी से वो है हमारे कलीखा साथी और वो है रजेश, रजेश प्रोग्राम को ऑफर ले गए।

0: जी हाँ जी हाँ दोस्तों, जैसे आप जानते हैं तो हम सब फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो पर चुने आज लाइव करो का है। हमारा अगले गायक जो दो गाना गा चुका है, एक मुकेश का एक सियास आत्मा का, आप गाने के लिए तैयार है भाई द्वार का?
1: वही बात है, किशोर कुमार के गीत में पेश करूंगा।
0: ठीक है, आप
1: किशोर कुमार और मुकेश दोनों भी दोस्त रहा,
0: सब दोस्त रहा, सब दोस्त रहा।
1: लेकिन मुकेश फिल्म अख्तर रहा मोतीलाल, मुकेश के पलवार रहा। तब मुकेश की आवाज़ सुनील घर पर एक दफे, तो ले गए अपन घरे और एगो गुरु के लायल है तो अपन घर पर ओके सिखाएल है गावे के। और निगरी फेफन फिर तक में जब दिल जलता है तो जलने दो, जब पहली नजर फिल्म में जब वो गीत पेश करल है तब सोकर आवाज़ दुनिया में नामिक हो गया। आज तलुक लोग ओकर आवाज़ सुनते हैं और सुनते भी रहेगा।
0: और सुन सुन के कितने रो रहा है, कितने का दिल टूट गया है, कितने जोड़ते हैं बनाते हैं। आज भिन से किशोरदा की आवाज़ हम सुनना चाहते हैं आपके जुबान से। एक जबरदस्त तालियां हो जाए हमारा राजन द्वारका के लिए।

0: जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ दोस्तों, दिल दिल से मिला के देखो द्वारका की आवाज़ अभी आप सुने थे। कुछ लोग तो यहाँ पे चुनमुन कर रहे थे, डांस का दूसरा नाम है चुनमुन। ठीक है, हम चलते हैं अगले कलाकार को हम पेश करने वाले हैं और वो और कोई नहीं है, हमारा दीदी है शांता। शांता आप क्या गाएंगे?
1: ख्वाब हो तुम।
0: ख्वाब हो तुम, ठीक है।
2: ख्वाब में कोई आवे,
0: ठीक है, आ रहा है।

0: वाह क्या बात है, शाबाश।
1: तो ये था हमारा कोलिखा साथी और वो है संता खेमई। साथ ही साथ संता खेमई न सिर्फ करोगा करते हैं भैया गंगा, वो हमारा ज्योति भजन कीर्तन समाज में भी है, अच्छा अच्छा भजन सुनाते हैं। साथ ही साथ हम अपनी जनता को, अपने दोस्तों को बता देना चाहते हैं, और हमारा कोलिखा यहाँ बोले काम मांगे फर क्लब करे वही खान प्रोबेरे में से ऑन सफोर सितर भैया गंगा है, उससे बातचीत हुआ है। लास्ट दोनदा फंड मंथ हम लोग करो को ओक करेंगे। एल्क लास्ट दोनदा फंड मंथ हम जानते हैं अभी भैया बीरबल के कितने परिवार, कितने दोस्त जो श्रीनाम देश से इस प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं, और वो लोग कहते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो हम सब कोशिश करेंगे लास्ट दोनदा फंड मंथ को लाइव करो का करेगा नया नया गीत से। ये बात ही है कि जो गीत हम आज गा रहे हैं और वो गीत फोल्क हनुमान भी गाएंगे, हम कोशिश करेंगे नया गाना। आप लोगों को बता दें इस वक्त स्टूडियो में हमारा होफ तकनीकियों से भैया राजेश हैगा, और संता खेमई है, भैया अनिल सरजू है, भैया गंगा है, भैया द्वारका है, राजन द्वारका है, और हमारे उस्तादिक उस्ताद भैया बिरबल है, सुरेन भगवान दिन है
0: इसे नहीं जानता,
1: और प्रोग्राम रेडियो फाहून से हम सब करेंगे। आप लोग को बता देना चाहते हैं कि हम सब एक चौताल ग्रुप भी बनाए हैं, जैसे हम सब फाहून करो का ग्रुप बनाए हैं, ऐसे हम सब एक चौताल ग्रुप बनाए हैं, और वो बिन कोर्ट में से खायली अलमाल द मोगलखेत क्रेक अ न्यू ट्राई फन फाहून टू विन मदर लात एक एवर एंड हाउ एवर दोर संता तैयार है मेरे ख्याल से।

0: वाह क्या बात है शांता जी और जॉनी नंबर वन, क्या बात है।
1: दोस्तों आप लोग को एक बात और, यानी हमारे पास बहुत सूचना है।
0: अच्छा, जैसे
1: खबर खबर हम देते रहते हैं और शांता काम करते हैं। मेरे ख्याल से किसका पारी है भाई, किसका पारी है भाई? भैया उस्तादों को उस्ताद भैया बिरबल अभी सुनाएंगे और बीच बीच में आप लोग को हम 2 तारीख को यानी कि 3 को ना सितंबर के हम सबको बजाना है दोस में। मेरे ख्याल से 3 सितंबर को हम सब दोस में बजाएंगे। अगर आप लोग को हमारा करोक ग्रुप को ज्वाइन करना है तब जरूर आ जाइए ट्रांसफॉल में, जहाँ पे हमारा औदर होता है। तो गंगा भैया डायरेक्ट अपन अखेंदा ताके है। तो 3 नहीं दोस्तों, वूसदाग को 2 तारीख को हम सबको बजाना है ट्रांसफॉल में। और एक और है, वो हैगा मेरे ख्याल से एक और बजाना है फ्लोरेंस में भी बजाना है। साथ ही साथ और प्रोग्राम अगर आप लोग को भी रेडियो फाहुन का करो का ग्रुप को लेना है तो आप लोग स्टूडियो में तैयार कर सकते हैं और हमारे साथ ज्वाइन करके और हमारा कोलीखा साथी को और पावर दे सकते हैं कि हम सब बाहर में और क्या करते हैं। तो शांता तैयार हो गया है मेरे ख्याल से, भैया सुरेन आ रहा है और अब वो शुरुआत करेंगे। और तू जानते वो हेमंत दादा का सॉन्ग है जो आप वो गाए गए।

0: भैया बीरबल सुरेन,
1: क्या बात है, क्या बात है, और क्या
0: भैया सुरेन, हम सोची तू लता के अलाप कीजिए।
2: Als je de postuurreflex elke dag 10 minuten gebruikt en dat één.
0: Nou, acha, to agla geet, aap sunoge, hamara priya jo hai, Shriman Anil Sarju se.
1: ठीक है दोस्तों, हम
0: क्या बात है, वही आवाज इसमें इतनी फिब्रासी है।
1: ठीक है, किशोरदा की गाना मैं आप लोग को सुनाने सुनाऊंगा, एक आखिरी गाना हमारा चलेगा,
0: जरूर जरूर चलेगा, नहीं दौरेगा
1: दौरेगा, ठीक है।

0: Thank you.
1: The King of Pia Anil Sarju ne aap log ko abhi sunaye hain. Iske baad aa raha hai aur Sona ki awaaz lekar. Sona ki awaaz kis ka hai bhaiya Anil?
0: Bhai Ganga.
1: जबरदस्त तालियां दीजिए भैया गंगा के लिए.
2: सोना पीतल हो गया.
1: और यानी कि कभी कभी पीतल के दाम इतना ऊंचा हो जाता भैया जो आपको है. तो मेरे ख्याल से संता तैयार हो चुका है. ठीक है.

0: तो दोस्तों मेरे ख्याल से रजेश भी आप लोग को कुछ बताना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। यहाँ तक था आज का लाइव प्रोग्राम जो है करोक का, और जैसे अपने हमें कहा है लास्ट दोन राख फन अनमान खावदा दून। रजेश वो कौन सा प्रोग्राम?
1: बहुत शानदार, बहुत शानदार, और सब कोई के शुक्रिया मेहरबानी और धन्यवाद कहते हुए वो मुतदित फोर्थ सेट।
0: नाउ एज अ टेक्निकस जब आप साथ हैं तो कैसे नहीं माखे कन अप्लाउज फॉर भैया रजेश।
1: अच्छा थैंक यू वेल। अच्छा तो मैं कलाकार नहीं हूँ, मैं तो डीजे हूँ और टेक्निकस हूँ। तो
0: सौंदर टेक्निकस के नोनिक्स
1: या मर खुद। अच्छा तब यहाँ तक बहुत पसंद आया मुझको, और आप सबके भी मैं उम्मीद आशा करता हूँ कि आप लोग भी यही मनोरंजन प्राप्त किए हैं आज के रात्रि के समय में। अच्छा देखते हैं, हाँ रात्रि के समय में कि आप लोग जो सुनते हैं।
0: हाँ रजेश अब तो नहीं हुई रखा हाल फिर रखा वो बेचे बबल एंड मिस्किन इन टू यूनिवर्स एंड न्यू मार्के स्टूडियो ऊपर नहीं में
1: या एक एक वेल द आलंग एक हाथ नोक मेयर परप्लेक्सिंग है, मगर हम रुक के ली है कि इतना शानदार प्रोग्राम तो हम बोली हम छोड़ के न जाए सकते।
0: लाते हुए एयर लग से रजेश सोन प्रोग्राम वो बात पे फंदा अखमाक्त है वो अब नीदरलैंड में ना भेले भाई अबे एक को रेडियो नीदरलैंड में ना भाई वैसे इंडे ए ईस्ट। ओके अभी सुना है कि कहीं पे हुआ है लेकिन दस एन वे ट्वेटर मैं ऐसे ना रहा जैसे भैया अनिल बोले हैं। कैसे रहा अनिल?
2: ऐसे ना रहा सर, कम से रहा मक्षा हम पिंडा खाए लगे हम बतिया दे
0: दुश्मन से वहाँ निमांत करा के वहाँ ओन से एक प्रोग्राम फोर से तो रजेश
1: सही कर हंड्रेड परसेंट एक नया नया कॉन्सेप्ट आया है, नया कॉन्सेप्ट कराओक लाइव तहोर
0: फाहन ग्रुप
1: फाहन ग्रुप
0: एंड बेर कौन खाओ में तो चौताल बखेन हो गए
1: एक दूधर खराखान में।
0: थैंक यू वेल रजेश ए बेन खाएर खाओ चौताल उफने फॉर एन फन द यार। और बसंत पंचमी होगा, बसंत पंचमी के हम सब कृष्ण मंदिर में वहाँ पर होलिका को गाड़ेंगे, साथ ही साथ हम सब होलिका फरवरानिंग करेंगे। चौताल फाहन ग्रुप का भी बन चुका है और वो भी हम सब कोशिश करेंगे थोड़ा बड़ा में करने को। तो रजेश के मार्ग स्टूडियो ओपनिंग में फर्क
1: है नहीं, एक छोटा के बात है फन लाइफ लाइफ इन द आउटसेंडिंग दैट इज हाउ लाइफ। और जैसे यहाँ पे हुए हैं ये कहना डायरेक्ट फॉर
0: Maar als jij staat dit Rajesh, we hebben alles in huis, dankzij iedereen zijn inzet, ben ik van plan toch buiten Ghana live hier ook te doen. Ha. En daarvoor heb ik bij je Surin nodig. En dat gaan we op een zondag doen. Dan gaan we hier live muziek doen, buiten Ghana hier Hamloon Karab. Dan gaan we karaoke hoege, buiten Ghana hoege, chautal hoege, van Fahons groep. Dus dat zijn we plan. Daar hebben we alles in huis ook.
3: Bhol mat jana Johnny number 1, aapka natak chahiye. Hum natak khelna chahte, ek natak likh jahan hum log natak bhi khel sake yaar. Gareeb ka kare bechara.
4: Okay, sunne wale srotaon, bhaiya Rajesh sab studio offer reh raha. Chote studio se hum log bade studio se chote studio mein ja rahe hain is baar. Bhaiya Rajesh ne jahan tak mera khayal hai.

फन फन के हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से ये कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तैयार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

0: बाहों हिंदुस्तानी रेडियो।
1: और आपको आज भी हम कोई प्यार भरे गीतों से, आपको हम प्यार भरो गीतों से मालामाल करेंगे कि आज गालो और मुस्कुरा लो, महफिल भी सजा लो, ना जाने कल कभी कोई साथी छूट जाए। और फिल्म के नाम है ललकार, पद्माश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ ये सॉन्ग है।

और दोस्तों आपको हम और दोस्तों हम आपको बताते हैं कि हम चलते हैं एक गीत की ओर, और वो गीत है गंगा जैसा मन तेरा। गंगा जैसा मन तेरा है और मोहम्मद अजीज इस गीत को गाया है। दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए।

तुम तो ठहरे परदेसी और स्यात क्या निभाओगे जरा बताओ। अगर आप किसी परदेसी से प्यार करेंगे तो उसको कौन भरोसा है, कौन भरोसा है कि वो साथ तेरे साथ वो निभाएंगे। तो हम चलते हैं अलका याग्निक और माधुरी दीक्षित का, जिसमें काम किया है, फिल्म के नाम है खलनायक की ओर।

के और पालकी में होके सवार चलिए, और मैं तो अपनी साजन की और द्वार चलिए। और चलते हैं अलका याग्निक कुमार शानू के ओर, जिस फिल्म में संजय दत्त ने काम किया है महिमा चौधरी के साथ। तो चला जाए अलका आपकी आना और दिल में धड़काना।

और मेहनी लगा करे और खुद चले आना, और जब मेहनी लगेगी तो प्यार जरूर आएंगे हमारे दोस्तों। चलते हैं कुमार शानू और साधना सरगम की ओर। इस फिल्म में गोविंदा और शिल्पा शेट्टी ने काम किया है, और दोस्तों आओ सुना जाए ये कौन सा सॉन्ग है, और ये बहुत मस्त फिल्म के नाम है क्रेडिट्स भैया। हाँ।

फन फन हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे आमदनी के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। आमदनी के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेट होने के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 6 3 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और दोस्तों आज भी आप लोग को हम कुछ पुरानी और मिले जुली गीत को हम सुनाएंगे, कोई बेवफाई या प्यार का शेर भी आप लोग को हम सुनाएंगे। यानी कि आजकल के ज़माना में बेवफाई एक काम हो गया दोस्तों, और बेवफाई बहुत लोग करते हैं और वो करके कभी पछताते नहीं हैं। तो जितने लोग बेवफा है उस सब के लिए हम ये गीत यहां से चलाएंगे, लेकिन कहेंगे जरूर तू हजार बार भी रोते तू मीना, तू हजार बार भी रोते तो मना लूंगा तुझे, मगर देख मोहब्बत से समय दो मोहब्बत के शामिल कोई दूसरा ना हो। समझ गए ले दोस्तों कि किस्मत या मेरे इम्तिहान ले रही है, किस्मत या मेरे इम्तिहान ले रही है, तड़प कर या मुझे दर्द दे रही है, दिल से कभी भी मैंने उसे दूर नहीं किया, फिर क्यों बेवफाई को वो इल्जाम दे रहे हैं। तो हम चलते हैं एक भड़कते हुए और बेवफाई गीत है, फिल्म के नाम है ओ बेवफा, जिसमें अक्षय कुमार करीना कुमार ने काम किए हैं, करीना कपूर दोस्तों और सोनू निगम इस गीत को गाया है।

और एक बेवफा है और वो भी बेवफा है। फिल्म का नाम है बेवफा। और कहते हैं ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी से दूर होता है, ना कोई किसी के करीब होता है, वो खुद ही चल के आता है जो किसी का नसीब में होता है। हमारे सुनने वालों, ये बात है कि अगर जो आपके नसीब में ये हो तो वो खुद ही चल करे, वो खुद ही चल करे आएंगे। कि जिंदगी की हर तमन्ना पूरी नहीं होती, कि जिंदगी की हर तमन्ना पूरी नहीं होती, तकदीर की कोई भी मजबूरी नहीं होती। तो हम चलते हैं। क्या तुम्हें पता है हमारे दोस्तों, क्या तुम्हें पता है अए गुलशन, अए गुलशन, क्या तुम्हें पता है, आओ सुना जाए।

0: फॉर मोर एंटरटेनमेंट।
1: और क्या तुम्हें पता है ऐ गुलशन, फिल्म के नाम है दिल है बेताब, उदित नारायण का गाया हुआ, और ये सॉन्ग है हमारे दोस्तों कि कहते हैं कभी उदास हो जाए, कभी उदास हो जाए तो बताना मुझे, कभी उदास हो जाए, कभी उदास हो जाए तो बताना मुझे, फिर से अपना दिल देंगे तुम्हें खेलने के लिए। वाह वाह वाह, अपना दिल आपको हम देंगे खेलने के लिए। और फिर कहते हैं कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, तेरे हर मुस्कान से मिली मुझे खुशी है, तेरी हर मुस्कान से मिली मुझे खुशी है, मुस्कुराते रहना इस तरह हमेशा, क्योंकि तेरे ही मुस्कान में मेरी जान बसी है। तो चलते हैं, तू प्यार तो प्रीत पराया धन, फिल्म के नाम है राकेश रोशन, हेमा मालिनी ने इसमें काम किए हैं, आओ सुना जाए।

Wat een romantische zong. Tu piar, tu priet. Film ke naam he. Piara, paraya dhan dosto. Paraya dhan se is romantic song ko humne nikal kare. Aur aap log ke kano tuk radio phone ke madhyam se. Aur humne pahuncha diya hai. Agar mohabbat nahi thi, to bata diya hota. Agar mohabbat nahi hoti, to bata diya hota. Tere ek chupne meri zindagi barbaad. बात कर दी है तो मोहब्बत में तो लोग बर्बाद होते हैं भी दोस्तों और कहते हैं कौन कहता है ताजमहल बनाने के लिए पैसा नहीं मिलती कौन कहता है कि ताजमहल बनाने के लिए दौलत नहीं मिलती ताजमहल बनाने के लिए दौलत तो मिलती है मगर मोहब्बत करने के लिए मुमताज नहीं मिलती तो ये बात तो है ना हमारे यारो तो हम चलते हैं और एक रोमांटिक सॉन्ग है लव गैम्बलर कुमार शानू साधना सरगम का हम उनसे मोहब्बत करते हैं

हम उनसे मोहब्बत, हम उनसे मोहब्बत करके और लव कैम्बलर कुमार शानू साधना सरगन का ये सॉन्ग थे दोस्तों। और हम चलते हैं कुछ आंखें की ओर। और आंखें क्या कहते हैं? आंखें कहते हैं, आंखें चाहती है दीदार करना, आंखें चाहती है दीदार करना, दिल चाहता है प्यार करना। क्या बताऊं इस दिल को आलम, नसीब में लिखा है इंतजार करना। तो दोस्तों आपको हम सुनाएंगे एक गीत, और वो गीत क्या होगा आप खुद ही सुनिए। कि मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर, मेरी चाहत देखनी है तो मेरे दिल पर अपना दिल रख कर देख, तेरे धड़कन ना बजा दूं तो मेरा मोहब्बत ठुकरा देना। तो आंखें के ओर हम चलते हैं, और जब किसी से प्यार करना है तो मत भूल जा दोस्तों कि रास्ता उसका दिल में बनाना है तो उसके आंख में से रास्ता बनाकर उसका दिल में उतर जाना। आओ मिलकर सुना जाए अनुराधा पौडवाल का ये सॉन्ग।

दूर तेरी नैना मेरे नैनों से, और वो क्या कहते हैं, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बातें कहते हैं कि जब भी देखता हूँ तुम्हें लगता है, जब भी देखता हूँ तुम्हें लगता है ये दिन नया है, निगाहें तुमको देखने चाहती है, मेरे दिल को ये क्या हुआ है दोस्तों। ये बात तो है ना, मिलने तो हजारों लोग थे जिंदगी में, पर वो सबसे अलग था जो किस्मत ने नहीं था। तो हम चलते हैं आज की बहारों की मलिका।

मलिका अभिज्ञा भट्टाचार्य, दस्तूर फिल्म का नाम है रोमांटिक जोन। तो दोस्तों हम चलते हैं और एक गीत की ओर कि दिल में तुम्हारी अपना कभी छोड़ गए, दिल में तुम्हारी अपना कभी छोड़ जाएंगे, आंखों में इंतजार की लकीर छोड़ जाएंगे हमारे हमारे प्यारे प्यारे दोस्तों। हम चलते हैं एक गीत की ओर, नाना करते इकरार कर लिया है।

और दिल लिया और अपना दिल दे दिया। और ये जो गीत आप हम आप लोग को प्लेयर पे रख दिया है, उंगली में अंगूठी है और अंगूठी में नगीना है, ये तो आप लोग सब जानते ना। आ मिल के इस गीत को सुना जाए।

पे क्या है भैया? उंगली में तो अंगूठी है, अंगूठी में है नगीना। और कुछ शायर और शायरी आप लोग को हम सुनाएंगे दोस्तों, प्यार भरी गीतों का महार प्रोग्राम। यहां से हम चलते हैं, कुछ शायर और शायरी हो जाए कि मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, मत सोच तू इतना जिंदगी के बारे में, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो कुछ सोचा होगा। हमारे यारो कि कहते हैं कि एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, एक दिन हम भी कफन ओढ़ जाएंगे, हर एक रिश्ता सी जमीन से तोड़ जाएंगे, हर एक रिश्ता इस जमीन से तोड़ जाएंगे, जितना जी चाहे सता लो यारो, एक दिन रुलाते हुए सबको हम छोड़ जाएंगे। ये हमारा पहला शेर है आज के।

और उड़े जब जब जुल्फे तेरी, और ओ जब जुल्फे उड़ते हैं तो कुमारियों का दिल क्यों मचलते हैं, आपको पता है तो जरूर बता देना कि क्यों मचलते हैं, कि कहते हैं कि जब आपका नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल को क्या मुस्कुराता है। जब आपके नाम जुबान पर आता है पता नहीं दिल क्यों मुस्कुराता है, है तसल्ली होती है मन को कोई तो है अपना जो हंसते हुए हर वक्त याद आता है। अक्सर हम अपनी रात यूं बर्बाद करती है, अक्सर हम अपनी रात क्यों बर्बाद करती है, बैठ के किसी कोने में उनको याद करती है, उनके वापिस आने की उम्मीद तो छोड़ दी कब की, फिर भी ना जाने क्यों हम अपना वक्त बर्बाद करती है। हम चलते हैं नाइटिंगेल, लता जी का एक सॉन्ग है जो एक हिट फिल्म था, फिल्म के नाम है बॉबी।

और अफसर कोई लड़की इस हाल में कोई जरूर कभी 16 बरिस के थे दोस्तों। फिल्म के नाम है बॉबी और ये यानी कि एक हिट सुपर हिट फिल्म थी ऋषि कपूर का दोस्तों और डिंपल का। हम कहते हैं कि किस्मत के लकीरों पर यकीन, किस्मत के लकीरों पर यकीन करना छोड़ दिया है जॉनी, किस्मत के लकीरों पर और यकीन कर दिया है जॉनी। जब इंसान बदल सकता है तो ये लकीरों क्यों नहीं दोस्तों। दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दर्द में कोई मौसम प्यारा नहीं होता, दिल हो प्यासा तो पानी से गुजारा नहीं होता। कोई देखे तो हमारी बेबसी हम सभी के हो चाहते हैं पर कोई हमारा नहीं होता। हम सबको हो जाते हैं पर हमारा कोई नहीं होता है दोस्तों। कि कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, कभी किसी से प्यार मत करना, हो जाए तो इनकार मत करना, निभा सको तो चलना उसकी राह पर, वरना किसी के जिंदगी बर्बाद मत करना। फूल तुम्हें हम भेजाए हैं यहां रेडियो फाहुन के माध्यम से और ये है मैथी मुकेश और लता जी का ये सुपर हिट सॉन्ग।

और फूल भी और भेजा है खत में और फूल नहीं वो किसी का दिल है दोस्तों, यानी कि फूल के खुशबू में किसी के दिल भी चला जाता है कि कहते हैं अई दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटे शायद ना आ सकू, अई दोस्त मैं तेरी खुशियां बांटते शायद ना आ सकू, हाँ ये वादा रहा जब गम आए तो खबर कर देना सारी की सारी, सारी की सारी ले जाऊंगा मैं, यानी कि तुम्हारा गम। तो दोस्त इसी को कहते हैं दोस्तों कि बहुत रोया है दिल, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, बहुत रोया है दिल उन्हें याद करके, कुछ ना मिला रूप से भी फरियाद करके, वो कह गए मैं ना दूंगी साथ आपका, कोई पूछे उन्हें क्या मिला हमें बर्बाद करके। हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर, वो है फिल्म के नाम है लव स्टोरी जिसमें, और वो है कुमार गौरव यंती इसमें काम किया है और ये भी एक बहुत सुपर हिट फिल्म थी दोस्तों। ये गीत हम आप लोग को जरूर सुनाएंगे।

Oh, maybe I love story film ka naam hai 1981 ka aur jitne log is samay pe 18-19 barish ke the dosto to full house ke saath hamara Suriname ka jo jitna film halls the wo itne full the dosto is film bhi hum bhi kai baar ja kar dekhe hai lekin man nahi bhara ek mohabbat bhari pyar ka ye film hai aur हम हसरत करते हैं जिनकी वो तो छुप गई कहीं अगर तुम साथ दे तो नजर आ जाएंगी वो कहीं कि अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने अपनी तमन्ना से कभी कुछ नहीं चाहा था हमने उसकी खुशी ढूंढते रहते तो बदनाम हो गई हम बदल पे छलके हैं और नैतिक लता जी का ये एक सॉन्ग है दोस्तों आओ मिलकर सुना जाए जिसमें अनिल ऋषि मीनाक्षी काम किए हैं और इस फिल्म का हम खोजते हैं ये कौन फिल्म का गीत है अगर जो हमें मालूम हो गया दोस्तों तो आपको हम जरूर बता देंगे लेकिन और इस फिल्म में काम किया है मीनाक्षी काम किया है दोस्तों और आओ मिलकर सुना जाए इस गीत को।

और बादल पे चल के आ, और इसमें अनिल कपूर, ऋषि ऋषि मीनाक्षी सोनम, नैतिकी लता जी और श्रीस का ये गाया यानी कि फिल्म है और बदल पे छलके है, बदल पे छलके है सॉन्ग का नाम है। और दोस्तों हम चलते हैं कुछ शायर और शेरी के ओर, और कहते हैं कि पलकों से आंखों की, पलकों के आंखों की हिफाजत होती है, पलकों से आंखों की हिफाजत होती है, धड़कन दिल के अमानत होती है, हाय और हमारा रिश्ता भी बड़ा प्यारा है, कभी चाहत तो कभी शिकायत होती है। और कितने लोग हैं जो अली स्तंद है दोस्तों, जो अकेले रहते हैं, अकेलापन है, मेंस दी अलेन साइन फॉर दी मेंस हैपी की नाम लिख अनपार मोशाइस एंड कि ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना साथ है किसी का ना सहारा है कोई, ना हम है किसी के ना हमारा है कोई। कहते हैं चेहरे के हंसी से, चेहरे के हंसी से हर गम छुपाऊं, बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला पर कुछ ना बताऊं, कुछ ना रोतो, कुछ ना रूठो कभी पर सबको मनाओ, खुद ना रूठो पर किसी को, पर सबको मनाओ, ये राज है जिंदगी का, बस जीते जाओ। और कभी कभी प्यार करते हैं तुम किसी से, लेकिन वो अमानत किसी और का है।

और दोस्तों तू प्यार है और किसी और का और तुझसे चाहता है कोई और है कि कहते हैं प्यार का बदला कभी चुका नहीं सकेंगे, प्यार का बदला कभी चुका ना सकेंगे, चाह कर भी आपको भुला ना सकेंगे, आप ही हो मेरे लबों की हंसी, आपसे बिछड़ कर कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। और जो लोग अकेले रहते हैं वो कहते हैं फिर से तेरे महफिल में चला आया हूँ, फिर से तेरी महफिल में चला आया हूँ, अंदाज वही है बस अलवास नया लाया हूँ, ऐ काश दूर रहने वाले ठड़को एक बात, तुहके एक बात कहना चाहता हूं, अगर मेरा ख्याल आए तो अपना ख्याल जरूर रखना।

ये तो सही बात है दोस्तों, जैसा मेरा प्यार है वैसा हमारा गुस्सा वो भी है दोस्तों। आपको यहाँ गीत में बताए गए हैं कि कहते हैं किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो, किसी को चाहो तो इस अंदाज से चाहो कि उसको जब भी प्यार मिले तो तुम याद आ जाओ। और कहते यार करते हैं तुम्हें तन्हाई में, याद करते हैं तुम्हें तन्हाई में, दिल डूबा है गमों की गहराई में, हमें मत ढूंढना दुनिया के बीच में, हम मिलेंगे तुम्हें तो तुम्हारी ही परछाई में। तो दोस्तों ये कुछ शायरी और शायरी आप लोग के लिए हम चलाएं।

क्या मांगू इस गीत को मांग किया है और आप लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: जीना है और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है?
1: क्या है?

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा जा जा आम
1: ओरे

और जाने क्यों लोग मोहब्बत करते हैं, क्या आपको मालूम है? आपको पता है कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं हमारे यारो? तो जरूर हमसे आप बता देना। हम चलते हैं अलका की ओर, अलका याग्निक की ओर, और फिल्म के नाम है खल नायक। इस नहीं सोन ओ फिल्म से मार अति से ही लमो यूनिवर लात वे वीडियो के खान draaien voor de mensen die namelijk niet alleen oude nummers, maar ook nieuwe nummers horen. Het is niet helemaal nieuw, maar toch wel.

पालकी में होके सवार चली रही। फिल्म का नाम है खलनायक। खलनायक के बाद हम जाते हैं, क्या आपको भी प्यार हो चुका है और अपने प्यारी को कहते हैं कि आज नहीं कल नहीं लेकिन 100 साल पहले भी हमें तुझसे मोहब्बत थे। नाइटिंगेल लता जी, आशा परेख देवानंद का ये फिल्म है। सॉन्ग है पद्मा श्री मोहम्मद रफी और नाइटिंगेल लता जी का ये सॉन्ग है। बहुत लोग इस गीत को पसंद करते हैं, मुझे यही उम्मीद है कि आपको भी ये गीत अच्छा लगेगी। कारण कि ये गीत सुनते सुनते सुनते सुनते लेकिन दिल कभी भरता ही नहीं है। आओ सुना जाए।

करोड़ सौ साल पहले तो मुझे प्यार था, मालूम नहीं है कि सौ साल पहले हम क्या थे दोस्तों, वो तो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन एक गीत आपको हम सुनाते हैं और वो है कभी कभी दिल से लग जा गले। नैतिकी लता जी फिल्म के नाम है, मूवी का नाम है वो कौन थी। वो कौन थी नहीं कहती हॉन्टेड एंड फिनेस का। इस फिल्म में काम किया है मनोज कुमार, साधना, हेलन, प्रेम चोपड़ा। आओ चला जाए लग जा गले में। क्या है

गले लग जाना लग जा गले तो फिर ये मुलाकात हो ना हो। नाइटिंगेल लता जी फिल्म का नाम वो कौन थी, और ये गीत जो है दोस्तों हम चलते हैं हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं है, किसी से जब प्यार करते हैं तो उसका जवाब तो कभी हो ना हो, हो ना सके। परमात श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है, मूवी के नाम है घराना 1961।